सुप्रभात एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 29, तदनुसार 20 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों

0: उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC Bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The bill will now be tabled in the monsoon session of the State Assembly beginning today. Under the key provisions of UCC, more than one marriage will not be valid in the state. Divorce will have to follow a legal process. Women and men will get equal inheritance rights. Registration of live-in relationships will be mandatory within 1 month. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. After a tense and fiercely contested 90 minutes ended goalless, Torres finally broke the deadlock in the 106th minute. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. With its victory, Spain became the first nation to simultaneously hold the World Cup crowns in both men's and women's soccer. The championship dethroned Argentina, which was trying to become the first repeat champion since Brazil in 1962. In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and sealed a 2-1 series win at Lord's in London. Last night, England set a target of 388 runs for India. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Opting to bat first, England scored 387 runs for the loss of 3 wickets in the allotted 50 overs. And that is the end of this news bulletin.
5: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये भक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए आपको आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 6:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे आनंद मोहन पाठक और सुबह 7:00 श्रोताओं हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 पर। 8:40 पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप श्रोताओं आनंद लेंगे, उड़ान लोकगीत का कलाकार होंगे जगन्नाथ उराव और उनके साथी। सुबह 9:00 सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम विविधा, जिसमें श्रोताओं आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मून दिवस पर और विश्व शतरंज दिवस पर। 9:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10:00 आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के रांची केंद्र। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, हर नई सुबह हमें एक नया अवसर देती है, इसलिए मुस्कुराइए और पूरे उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। श्रोताओं, आज के जोहार चायबासा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे मधुर गीत और उसके साथ ही कुछ टिप्स। तो सबसे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया आनंद बख्शी की ये रचना राजेश रोशन के धुन पर। फिल्म का नाम था यही है जिंदगी। और अब श्रोताओं, बात करते हैं मौसम की। आज यहाँ बादलों की आवाजाही रहेगी और वर्षा की संभावना बनी रहेगी, तो इसलिए घर से निकलते समय छाता या रेनकोट अपने साथ अवश्य रखें। वाहन चलाते समय फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी बरतें और अपनी गति को नियंत्रित रखें। और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मेरा साया का ये गीत, और इस गीत को भावपूर्ण आवाज़ से अमर बनाया लता मंगेशकर ने। संगीत मदन मोहन

और इसके बोल लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने। और अब श्रोताओं, आपको कुछ ट्रैफिक संदेश दे देते हैं। सड़क पर आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी का जीवन बचा सकती है। हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। पैदल यात्री सड़क के बाईं ओर ही चलें। याद रखिए, सुरक्षित सफ़र, सुखद सफ़र।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये प्यारा सा गीत फिल्म मेला से। और अब श्रोताओं, हम सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गंगा जमुना से। श्रोताओं, आज भी यह गीत उतना ही ताज़ा और सुरीला लगता है जो अपनी लोक धुन, चंचल भावों और मधुर संगीत के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने। इसके संगीतकार हैं नौशाद और गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म गंगा जमुना से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ। झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है।
3: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। लेकिन इससे पहले दोस्तों, सुबह की ताजी हवा में 20 से 30 मिनट तक अवश्य टहलना चाहिए और हमें हल्का व्यायाम भी करना चाहिए और पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पूरे शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
4: गांव बरगड़ा आड़की थाना

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म लोफर का ये गीत आशा भोसले के स्वर में, और अब सुनते हैं ये अपील।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ना धरा रे नाकागी आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो घर आई में हमारे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुकुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाम तपा में रिया वहा बेटा निका
7: अन्या मुकुम बुम्बई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा दोनों में पूरी दिन बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रंग गया तब जाए तेरे काका बुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना इरो जिता हुरा रे मिना इरो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया नु तुम ते ना आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: और इस अपील के बाद श्रोताओं, आप सबों का कार्यक्रम जोहार चैबासा में फिर से स्वागत है। श्रोताओं, बरसात का मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है। कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी अपनाकर आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी का उपयोग करें, भोजन हमेशा ताज़ा और गर्म खाएं और लंबे समय तक बाहर रखे हुए खाने से बचें। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही उपयोग करें। हाथों को साबुन से बार बार धोने की आदत डालें, खासकर भोजन करने से पहले और शौचालय के बाद। और एक विशेष सुझाव है श्रोताओं, मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी या मच्छर रोधी क्रीम का उपयोग करते रहें। बारिश में भीगने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहनें और अपने शरीर को अच्छी तरह पोंछ लें। सड़क के किनारे खुले हुए कटे हुए फल और अस्वच्छ भोजन से बचे। हल्का व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार से अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। यदि तेज बुखार, लगातार उल्टी दस्त या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, याद रखिए, बरसात का आनंद तभी है जब स्वास्थ्य भी रहे बेहतरीन और थोड़ी सी सावधानी से आप पूरी परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो इस सुझाव के बाद श्रोताओं, लेते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले गाने का आनंद।

आशा भोसले और मन्ना डे के युगल स्वर में श्रोताओं अभी आपने सुना फिल्म तीसरी कसम का ये गीत, और अब आनंद लेते हैं अगले गीत का।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल

श्रोताओं, अभी आपने सुना दिलीप कुमार अभिनीत मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म संघर्ष का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी के धुन पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म मधुमति का ये गीत। और अब श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नक्श लालपुरी के बोल जगमोहन बख्शी के धुन पर आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। फिल्म का नाम था अभी तो जी ले। और अब श्रोताओं, इसी गाने के साथ हमारा आज का जोहार चायबसा का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और इस समय कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। ऑर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म, लघु और मध्यम

0: विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गाँव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान

0: सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 1798 मीट्रिक टन अवैध कोयला किया जब्त। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत की गई कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करने की अपील की। कहा, 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव पाठशाला का आयोजन। संताली फिल्म आंगिन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को दी बधाई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का जताया अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की है संभावना। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर पिछले 3 सप्ताह में लगभग 1,08,00,000 रुपये मूल्य का 1,798 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया है। सीआईएसएफ ने बताया कि ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत आधुनिक तकनीक, खुफिया सूचना और बढ़ी हुई वैधानिक शक्तियों के उपयोग से की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करें, ताकि डिजिटाइजेशन और एएसटीडी सूची का कार्य समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 97.8% मतदाताओं तक घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं तथा प्राप्त फॉर्मों में से 67% का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलओ 2 की तीसरी बैठक एवं चुनाव पाठशाला आयोजित होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए आज विशेष कैंप लगाए जाएंगे। रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी मतदाताओं की सुविधा के लिए आज सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता से।
1: रांची जिले के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर उन्हें भरकर जमा कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी शहरी मतदाताओं से शिविर का लाभ उठाकर समय पर फॉर्म जमा करने की अपील की है। जिले में अब तक 91% से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण तथा 54% से अधिक फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। तमाड़, सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100% फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने 100% फॉर्म वितरण, संग्रहण और समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: झारखंड में हो रहे जनगणना कार्य को देखते हुए सरकार ने इस कार्य से जुड़े अधिकारियों का तबादला 31 मार्च 2027 तक नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के अनुसार ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संताली फिल्म आंगेन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे झारखंड और संताली समुदाय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि आंगेन ने संताली भाषा, संस्कृति और झारखंड की रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर की गई नई पहचान दिलाई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में झारखंड को 17 बड़े राज्यों में 16वां और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 25वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों और बेहतर वित्तीय स्थिति को राज्य की प्रमुख ताकत बताया गया है, जबकि कारोबारी माहौल और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कमी को बड़ी चुनौती माना गया है। नीति आयोग ने कहा है कि झारखंड को निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगों को शीघ्र मंजूरी, पारदर्शी नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है। चतरा के इटखोरी प्रखंड बाजार में 12 जुलाई को ज्वेलरी व्यवसायी दिलीप सोनी की बाइक की डिक्की से करीब 60 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी मामले में पुलिस ने उड़ीसा के जाखापुर थाना क्षेत्र के दशमनिया गांव निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेतानी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरोह के सदस्य को हैदराबाद में अपराध करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था।
3: आरोपी है, उनके पास से 2 हाई स्पीड मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है और पूरे गांव में काफी युवा इस काम में शामिल रहते थे। ठेकी करने वाला ग्रुप अलग रहता था और साथ ही झपट्टा मार करके डिगी तोड़ने का भी ग्रुप अलग रहता था, जिनको समय समय पर हैदराबाद में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे लॉक खोले जाते।
0: सरायकेला जिले आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया स्थित बोलाईडी बस्ती में हुए जगन्नाथ गोप उर्फ काड़ा हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्यगायारी ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
4: एसआईटी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एविडेंसेस और विटनेसेस सहित हम लोगों ने 4 अभियुक्त शिव प्रमाणिक, संजय नायक, प्रेम नायक और गणेश नायक को गिरफ्तार किया। उन लोगों के खिलाफ में हम लोगों को एविडेंस मिला है, सीसीटीवी फुटेज और उनके निशानदेही पे हम लोगों ने जो क्या में प्रयोग किए हुए 2 रड उसको हम लोगों बरामद किया है।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विभिन्न वर्गों के विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने फीफा विश्व कप फुटबॉल फाइनल मुकाबले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। शीर्षक है, स्पेन विश्व चैंपियन, स्पेन की दीवार को नहीं भेज सकी मेसी की अर्जेंटीना। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राज्य में हर बीमारी की अब बनेगी प्रोफाइल। दैनिक जागरण ने आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को पहले पन्ने पर जगह दी है। शीर्षक है, मॉनसून सत्र में हावी रहेंगे चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक और एथेनॉल के मुद्दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 1,798 मीट्रिक टन अवैध कोयला किया जब्त। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत की गई कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करने की अपील की। कहा, 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव पाठशाला का आयोजन। संताली फिल्म आंगिन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रविराज मुर्मू को दी बधाई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का जताया अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की है संभावना। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने लिया भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, माटी की महक में आज आपको सुनवाएंगे उरांव लोकगीत। कलाकार हैं जगन्नाथ उरांव और उनके साथी।

0: आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: हिंसा से सनी राहें अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम, जिसमें आपको सुनवा रहे थे जगन्नाथ उरांव और साथियों से उरांव लोकगीत।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मून डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस पर और विश्व चंद्रमा दिवस पर, क्षमा करेंगे, विश्व शतरंज दिवस पर। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय

0: चंद्रमा दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मानव इतिहास की उस अविस्मरणीय उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है जब 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। इस उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि विज्ञान, तकनीक और मानव संकल्प के बल पर असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 2021 को एक प्रस्ताव पारित कर 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य चंद्रमा के शांतिपूर्ण उपयोग, अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग तथा भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान और नवाचार के प्रति प्रेरित करना है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो लगभग 384,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी पर ज्वारभाटा, मौसम के कुछ प्राकृतिक चक्र तथा रात के प्रकाश में चंद्रमा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सदियों से चंद्रमा साहित्य, कला, संगीत, दर्शन और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। भारत में यानी हमारे देश में चंद्रमा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ही गहरा है। करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होली, दीपावली और ईद जैसे अनेक पर्व चंद्रमा के चरणों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो श्रोताओं, 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन प्रक्षेपित किया गया और इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रांग, बुज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। 20 जुलाई 1969 को लूनर मॉड्यूल ईगल जब चंद्रमा की सतह पर उतरा, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके कुछ समय बाद बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे। माइकल कॉलिंस पूरे समय चंद्रमा की कक्षा में कमांड मॉड्यूल में रहे। नील आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्द आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। यह एक व्यक्ति का छोटा सा कदम लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति हम लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में प्रेरित करें। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दें। भविष्य के चंद्र अभियानों और वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित करें। आज हमारे देश ने भी चंद्र अनुसंधान में बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चंद्रयान 1 2008 चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण खोजने में महत्वपूर्ण रहा। चंद्रयान 2 2019 में चंद्रमा के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा की। चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बना। इसे भारत विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष देशों में शामिल हो गया। तो दोस्तों, चंद्रमा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। चंद्रमा पर वातावरण लगभग नहीं के बराबर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है। चंद्रमा पर एक दिन लगभग 29.5 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। अब तक केवल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर चल चुके हैं। चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को अपना एक ही भाग दिखाता है। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हमें विज्ञान, नवाचार और मानव साहस की उस अद्भुत यात्रा की याद दिलाता है जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। तो आज के दिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, अपनी नई पीढ़ी को अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रेरित करें, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग का संकल्प लें। यही आज के इस दिवस का वास्तविक संदेश है।
1: राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: मोर नाम मंगल राय को गाँव बाड़गड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मैंने आए वो लोग आउका वो जिंदा है ना, मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।
4: नाम है रंगबला देवी, कहाँ बारे हतो तो कहाँ तो घर आए ने हमारे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है।
5: नितम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
6: अन्य नितम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने में उड़ी उड़ी ने बागिया तो किये दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका बुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: और इस अपील के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है और सुनवा रहे हैं हम कार्यक्रम विविधा में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के अवसर पर ये एक गीत।

0: और इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं आइए अब बात करते हैं विश्व शतरंज दिवस पर। श्रोताओं आज के ही दिन यानी 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन शतरंज के खेल के महत्व, उसके इतिहास और मानसिक विकास में उसकी भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और इसलिए इस तिथि का चयन किया गया क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई। वर्ष 2019 में यूनाइटेड नेशन की महासभा ने 20 जुलाई को आधिकारिक रूप से विश्व शतरंज दिवस घोषित किया, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में शतरंज को शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक समरसता के साथ जोड़ते हुए बढ़ावा देना। ऐसे तो शतरंज का जन्म भारत में ही हुआ माना जाता है। लगभग 1500 वर्ष पहले भारत में चतुरंग नामक खेल खेला जाता था, जिसे आधुनिक शतरंज का प्रारंभिक रूप माना गया। यह खेल भारत से फारस पहुंचा, जहां इसका नाम शतरंज पड़ा। बाद में यह यूरोप पहुंचा और समय के साथ आधुनिक शतरंज के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार भारत को शतरंज की जन्मभूमि माना गया। शतरंज केवल मनोरंजन का खेल नहीं, बल्कि यह मानसिक विकास का एक उत्कृष्ट माध्यम भी है श्रोताओं, जिसके प्रमुख लाभ हैं, जैसे कि इससे तार्किक सोच विकसित होती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, धैर्य और अनुशासन का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, समस्या समाधान की योग्यता बढ़ती है और आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच का विकास भी होता है। इसी कारण आज अनेक विद्यालयों में शतरंज को सह पाठ्यक्रम की गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। भारत ने विश्व शतरंज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और कई बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने भारत में शतरंज को लोकप्रिय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हाल के ही कुछ वर्षों में भारत के युवा खिलाड़ियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों, जिनमें डी गुकेश, आर प्रागनंदा, अर्जुन एरिग्यासी और कोनेरू हम्पी जैसे खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। विश्व शतरंज दिवस के अवसर पर दुनिया भर में शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। विद्यालयों, महाविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बच्चों को शतरंज सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। शतरंज के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व पर भी चर्चा की जाती है। दोस्तों शतरंज हमें सिखाता है कि जीवन की हर चाल सोच समझकर ही लेनी चाहिए। धैर्य, दूरदृष्टि और सही रणनीति से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो भारत को तो शतरंज की जन्मभूमि ही माना गया है। आज विश्व शतरंज में नई ऊंचाइयां भारत छू रहा है। इस अवसर पर हम शतरंज को अपनाएं और अपने जीवन में सोच समझकर निर्णय लेने की आदत को विकसित करें। अंत में संदेश देना चाहेंगे श्रोताओं, जीवन भी शतरंज की तरह है। हर चाल सोच समझकर चलें, क्योंकि एक सही निर्णय आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे विश्व शतरंज दिवस पर।
1: तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और अब श्रोताओं, सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम विविधा में ये गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और हम सुनवा रहे हैं अब आपको फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंजन का पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना जा निशार अख्तर के लिखे बोल, जयदेव के धुन पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत। और अब सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फिल्म पाकीजा का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5,00,000 तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: असद भोपाली के बोल और रवि के धुन पर अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म उस्तादों के उस्ताद का ये गीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गुलजार का लिखा ये गीत आर डी बर्मन के धुन पर किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गोलमाल से। और अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना यशुदास का गाया फिल्म शिक्षा का ये गीत, और अब चलते चलते सुनवा रहे हैं ये गीत।

फिल्म प्रेम रतन धन पायो के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म गीतों का कार्यक्रम रसरंजन यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे शान और साथियों को।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओ, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
3: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, आज सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर

0: कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं।
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया।
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
7: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
7: क्यों दे दो?
6: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
7: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
8: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
9: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
10: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
9: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
9: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
7: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
10: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
7: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
9: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
9: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
11: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
12: गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा
5: है। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
10: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ। आओ मेरे पास, आ जाओ।

0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: स्वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: आज से श्वेत केतु।
1: आज्ञा दत्त,
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ, हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसि कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फल तात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो।
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है।
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वम तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वनियंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 10:30 होने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार जोहार।
1: और विनोद का भी नमस्कार जोहार।
0: नमस्कार विनोद जी।
1: नमस्कार आपको भी।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: अब हम अपने श्रोताओं से हालचाल पूछ लेते हैं कि वो कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता बहुत खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और जिस बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम का, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले विनोद जी, अगर कुछ मनोरंजक शुरुआत हम कर लें
1: बिल्कुल
0: तो कैसा रहेगा?
1: बहुत अच्छा।

0: आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। विनोद जी, कहानियों के माध्यम से हम एक संसार बुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि एक सपना देखते हैं, एक सुनहरी जिंदगी का, है ना। और सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को जो रोमांचक बनाती है, क्या कहते हैं आप?
1: बिल्कुल, सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को वास्तव में रोमांचक बनाती है। और अगर ये आप पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में जीवन को कितना रोमांचक बनाना चाहती हैं, इसके लिए सपने तो आपको देखने ही होंगे।
0: और अगर आप सपने देखते हैं तो फिर उसकी तरफ एक सकारात्मक कदम भी बढ़ाइए, क्योंकि एक छोटा सा सकारात्मक कदम
1: बिल्कुल जिंदगी बदल सकती है।
0: आप जब अपना पहला कदम बढ़ाएंगे तभी तो आप आगे के डिसीजन लेंगे या आगे के स्टेप्स लेंगे।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। कई बार ऐसा होता है कि किसी समस्या से ग्रसित होकर जब हम ये हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि आगे क्या करें, अंधेरा सा छा जाता है। लेकिन आपने सही कहा कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, एक मोड़ तक जाएंगे, इसके बाद आगे आपको रास्ता स्वतः मिलता चला जाएगा।
0: हाँ विनोद जी, हालात कितने भी कठिन हो तो आपका ज्ञान आपसे नहीं छीन सकते श्रोताओं। ये हमेशा याद रखिए कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है अनुभव से या पढ़ाई के माध्यम से, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप विपरीत परिस्थितियों में बस धैर्य बनाए रखें। क्यों?
1: बिल्कुल, जीवन का ऐसा उद्देश्य खोजें जो आपकी क्षमताओं को चुनौती दे, यही सर्वोत्तम स्तर तक आपको ले जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जहां आप देख रहे हैं वहीं आप पहुंचेंगे। क्यों? अगर आप सपने बुनेंगे ही नहीं, मंजिल को तलाशेंगे ही नहीं, तो पहुंचेंगे कैसे वहां पर?
1: बिल्कुल,
0: जब आप एक उद्देश्य निर्धारित करेंगे, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे अपना, तभी आप उसमें ये कर सकते हैं। तो आप विनोद जी, एक बात हम अपने श्रोताओं से जरूर कहना चाहेंगे कि जिंदगी को जीते समय आप ऐसी योजनाएं बनाएं जो फलीभूत हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ योजनाएं बनाते रह जाएं और जो ये पल आपके सामने है आप उसे भरपूर जी ही ना पाएं। तो आप वर्तमान में जिए, इसकी हम आपको सलाह देंगे।
1: बिल्कुल, कल की चिंता आज की ऊर्जा का दुश्मन है। वर्तमान में जिए, शांति खुद आपके कदम चूमेगी।

0: आने वाला पल जाने वाला है। जी हाँ श्रोता साथियों, हम भी चाह रहे हैं कि इस पल का हम भरपूर उपयोग करें आपके साथ, बातों के साथ, जानकारियों के साथ। क्यों विनोद जी, और अभी जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मौसम की आंख में जाने बदस्तूर जारी है रांची में, और मतलब झारखंड में तो ऐसे कम बारिश की संभावना तो जताई जा चुकी है और हो भी रही है। हाँ हाँ, लेकिन फिर से मानसून जो सक्रिय हो रहा है विनोद जी, झारखंड में 2 दिन से राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश हो रही है, और कल भी रांची के कांके में सबसे ज्यादा 66.5 mm बारिश हुई। इस दौरान ठंड के गिरने से राज्य में 5 लोगों की मौत हो गई, ये काफी दुखद है। इनमें सरायकेला के 2, गुमला, जमशेदपुर व हजारीबाग में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य भर में बारिश होने का अनुमान जताया है।
1: बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, गुमला और खूंटी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान विभाग ने। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी और ठंड का गिरने की भी आशंका है।
0: वैसे मॉनसून बीच में थोड़ा सा कमजोर पड़ा था विनोद जी, लेकिन फिर से वो रफ्तार पकड़ रही है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट पर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 4-5 दिनों तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा। कई स्थानों पर भारी बारिश और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और देश की बात करें हम झारखंड से इतर, तो ओडिशा में कहीं कहीं अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऑल इंडिया वेदर के अनुसार स्लो प्रेशर सिस्टम के साथ भूमध्य रेखा के पास एक और बड़ी मौसमी प्रणाली भी सक्रिय हो रही है, और इसका असर 30 जुलाई तक उत्तर पूर्व और मध्य भारत में बारिश की संभावना को बढ़ाएगा, है ना। और अगले सप्ताह यानी कि आने वाला जो जुलाई का सप्ताह है उसमें बारिश,
1: मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो औसत बारिश की बात होती है तो संभवतः हो सकता है कि जो अभी कम बारिश हुई है, जैसे कि अगर रांची की बात करें तो यहाँ 20% कम बारिश होने की बात कही गई है। पूरे झारखंड की बात करें तो करीब 37% वर्षा भी कम हुई है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हो सकता है ये मेंटेन हो जाए आगे चल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो भले ही बीच बीच में गर्मी आ रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन अभी तो मौसम फिलहाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही आशिकाना हो रहा है। और एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए,

0: मौसम है आशिकाना। इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद विनोद जी, क्यों ना हम अपने इतिहास के पन्नों को जरा पलट लें।
1: बिल्कुल,
0: आज का दिन बहुत ही खास है। आज मून डे यानी चंद्र दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अपोलो 11 मिशन की सफलता को याद करता है। हर साल 20 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन 1969 में हुए उस ऐतिहासिक पल को सम्मान देता है जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2021 में एक प्रस्ताव पारित कर 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया। इस तारीख को अपोलो 2 मिशन की वर्षगांठ के रूप में भी चुना गया जब मानव पहली बार किसी अन्य ग्रह की सतह पर पहुंचा था। अगर इस दिवस की बात करें तो वैज्ञानिकों, अभियंताओं और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक प्रयास के रूप में जाना जाता है। शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव जिज्ञासा और नवाचार के साथ साथ दृढ़ता की शक्ति का परिचायक भी है यह दिवस।
0: आज के दिन एक बड़ी घटना और घटी थी। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर की हत्या का प्रयास किया गया था। ऑपरेशन वाल्किरी नामक साजिश रची गई थी जिसमें वो बाल बाल बच गए थे।
1: और 1810 में आज के ही दिन कोलंबिया ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी जिसे आज भी वहां के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 1951 की बात करें तो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला प्रथम की यरूशलम में हत्या कर दी गई थी। और 1976 की बात तो आज के ही दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था।
0: और अब अगर हम बातें करें कि इस दिन किन महान विभूतियों ने जन्म लिया था, तो विनोद जी, 356 ईसा पूर्व विश्व के महान विजेताओं में से एक मैसिडोनिया के सिकंदर महान का जन्म हुआ था। 1919 में आज ही के दिन माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी का जन्मदिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनेता, जाने माने जो हमारे राजनेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। और 1950 में भारतीय शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी मैनुअल ऑरेन का भी जन्म हुआ था। विनोद जी, आज एक जन्मदिवस की हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन हम पहले बात करते हैं महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी का, जिनका निधन हो गया था 20 जुलाई 1965 को, जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। हम श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें ये गीत पेश करते हैं।

0: הוא היה הכי חייס.
1: हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं, अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिले।
0: खोल दो।

0: उन महान देशभक्तों की शहादत को हमें हमारा नमन है। सचमुच हम उनके ऋणी हैं जिनकी बदौलत आज हम इस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं ना विनोद जी।
1: बिल्कुल।
0: और हमने बातें की थी आज जन्मदिवस बहुतों का है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही जिनके गीत हम इतने सुनते हैं उनमें से बहुतों का जन्मदिन है आज, जैसे राजेंद्र कुमार जी का है, नसरुद्दीन शाह जी का है, ग्रेसी सिंह का है। तो हम अभी पहले बातें करते हैं राजेंद्र कुमार जी की, जो सबसे बड़े ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में के मतलब वो उन्होंने दिया है फिल्म जगत को, जैसे संगम है, मदर इंडिया है, और उन्हें जुबली कुमार कहा जाता था विनोद जी, क्योंकि उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली यानी कि लगातार 25 सप्ताह तक चलती रही उनकी फिल्में, और मेरे महबूब, आरजू, आई मिलन की बेला, दिल एक मंदिर, घराना, ये सब राजेंद्र कुमार की बेहतरीन फिल्में थी और मतलब हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी वो छाई हुई है।
1: बिल्कुल। और अपने समय की अगर बात करें तो राजेंद्र कुमार ने उस समय के लगभग सभी अभिनेत्रियों, संगीतकार, गीतकार सभी के साथ उन्होंने काम किया और कई हिट फिल्में दी। अगर इनके जन्म की बात करें तो आज ही के दिन 1927 में उनका जन्म हुआ था, अविभाजित बिहार के सियालकोट जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ इनका जन्म हुआ था। बंटवारे के समय उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया और उन्होंने दिल्ली में शरण ली। राजेंद्र की पुलिस में सरकारी नौकरी भी लग गई थी लेकिन ट्रेनिंग पर जाने से ठीक पहले उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। अपनी कलाई की कीमती घड़ी बेचकर वो मुंबई आ गए, आज की मुंबई यानी कि कल का बॉम्बे। उन्होंने वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ ली। मुंबई में संघर्ष के बाद उन्हें 1950 की फिल्म जोगन और 1955 में वचन से पहला ब्रेक मिला। 1957 की ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे की भूमिका में उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। 1960 की बात करें तो 60 के दशक में उनकी फिल्में सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाने लगी जिसके कारण उन्हें जुबली कुमार का खिताब मिला।
0: तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत इनकी फिल्म का।

0: और अगर आज बात करें तो एक और प्रमुख हस्ती फिल्म अभिनेता का जन्म हुआ है और उनका नाम नसीरुद्दीन शाह, जैसा कि बहुत ही प्रचलित है। और इन्होंने एक थिएटर कलाकार के रूप में जो अब काम करना शुरू किया और अगर देखा काफ़ी ऊंचाई तक गए।
1: बिल्कुल।
0: और नसीरुद्दीन शाह जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में अदाकारी का एक पैमाना भी कहा जाता है, तो शायद ही किसी को ऐतराज़ हो, नसीर की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा के दोनों धाराओं में उनकी कामयाबी।
1: बिल्कुल। 20 जुलाई 1950 को जन्मे नसीरुद्दीन शाह भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें मुख्य रूप से पैरेलल सिनेमा, समानांतर सिनेमा का स्तंभ माना जाता है। उन्होंने मासूम, स्पर्श, जाने भी दो यारों और अवेयरनेस डे जैसी नई कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। विनोद जी, और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, दिल तो बच्चा है जी, ऐसे कुछ कुछ गाने जो हैं उनके काफी फेमस, प्रसिद्ध, लोकप्रिय है। तो हम भी आनंद उठा लेते हैं एक गीत का।

0: दिल तो बच्चा है जी, और बच्चे तो खेला करते हैं, बारिश में भी खेला करते हैं विनोद
1: बिल्कुल।
0: जी, लेकिन हमें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है इस बारिश में। वैसे अभी बहुत महत्वपूर्ण कुछ हुआ है, खेल फीफा
1: बिल्कुल
0: वर्ल्ड कप
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल।
0: हुआ अब।
1: और हमने खेल में कई नई ऊंचाइयां भी हासिल की है और अपना दबदबा भी बनाए रखा है।
0: लेकिन विनोद जी, हमारी बातों का डायरेक्शन थोड़ा चेंज है इस वक्त। बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं, लोगों के बहुत आइडल होते हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनके जैसा खेलना चाहते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं। और अगर हम हेल्थ की बातें करें तो कई बार बहुत से लोग उनकी तरह अपना हेल्थ भी बनाए रखना चाहते हैं, फिटनेस भी उनकी तरह
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं। तो हम आज कुछ जानकारी अपने प्रसिद्ध पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में अगर बता दें अपने श्रोताओं को, तो हमें लगता है कि उन्हें काफी अच्छा लगेगा और वो जरूर कुछ हेल्दी आदतें अपनाना चाहेंगे। तो अगर हम आज बातें करें रोनाल्डो के स्लीप फार्मूले की, मेसी के डाइट की, अच्छी सेहत के लिए जो फुटबॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, तो हमारे श्रोता बिल्कुल ध्यान लगा करके सुने, हम आपको कुछ बता रहे हैं। तो रोनाल्डो के स्लीप कोच निक लिटिल हेल्थ के अनुसार, रोनाल्डो रात में एक साथ 8 घंटे सोने की बजाय दिन भर में 90-90 मिनट के छोटे स्लीप साइकिल्स लेते हैं। इससे उनके शरीर को लगातार ऊर्जा और रिकवरी मिलती है। अब हर किसी को रोनाल्डो की तरह स्लीप साइकिल अपनाने की जरूरत तो नहीं है विनोद जी, लेकिन नींद को फिटनेस का हिस्सा जरूर मानना चाहिए।
1: बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के संदर्भ में कुछ और बातें हो जाएं। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के न्यूट्रिशियन जो हैं, डॉक्टर जूलियानो पोसर बताते हैं, मेसी प्रोसेस्ड फूड और एडेड शुगर को सीमित रखते हैं और डाइट में सब्जियां, फल, साबुदानाज, नट्स और पर्याप्त मात्रा में पानी लेते हैं।
0: और किलियन एम्बापे अपनी ट्रेनिंग में स्क्वैट, डेडलिफ्ट और बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वैट जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज करते हैं। इनसे एक साथ कई मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये एक्सरसाइज ताकत, स्पीड और संतुलन बढ़ाने में मदद करती हैं। वर्कआउट से पूरे शरीर को काम लेने लायक जो एक्सरसाइज है, आप उसको अपने ये में जरूर शामिल करें। और दिमाग शांत रखने के लिए खिलाड़ी मैच से पहले अपनी परफॉर्मेंस विजुलाइज करते हैं। एमिलियानो मार्टिनेज कई बड़े मैचों से पहले खुद को सफल होते हुए देखते हैं, कल्पना करते हैं। काम पर जाने से पहले, वर्कआउट से पहले 2 मिनट शांत बैठकर अपना लक्ष्य विजुअलाइज करें श्रोताओं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये तो सकारात्मकता की एक अच्छी बात होती ही है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रूप में देखें, अपने आप को उस रूप में कल्पना करें आप जिस तरह बनना चाहते हैं, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात कि फुटबॉलर्स इंजरी से बचने के लिए मैच से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग जैसे लेग स्विंग, हाई नीज, लंजेस और बाद में स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। यह मांसपेशियों की जकड़न कम करते हैं और रिकवरी में मदद करती है।
0: हाँ तो भाई, आप अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को फॉलो जरूर करें, जिम जरूर करें, लेकिन संभल के, क्योंकि बचना
1: बिल्कुल
0: तो हर जगह पड़ता है।

0: विनोद जी, इस समय मौसम जो हो रहा है काफी सुंदर सुहाना हो रहा है, प्रकृति अपने पूरे उफान पर है। और अगर ऐसे में हम बात करें गोवा की तो बीचों के लिए जो मशहूर गोवा पर मानसून खास मेहरबान है। दक्षिणी गोवा में 22% अधिक बारिश हुई है। इसके चलते गोवा कर्नाटक सीमा पर भगवान महावीर अभ्यारण्य स्थित विश्वविख्यात दूध सागर जलप्रपात पूरी रफ्तार से बहने लगा है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण झरने का पानी दूध की तरह सफेद दिखता है, इसलिए इसे दूध सागर जलप्रपात कहते हैं।
1: बिल्कुल, इन दिनों अगर हम बात करें तो झरने से गिरती पानी की बूंदें ऐसा नज़ारा बना रही हैं मानो बादल नीचे उतर आए हों। तेज बहाव के दौरान पानी की फुहारें इतनी दूर तक पहुंचती हैं कि यहां से गुजरने वाली ट्रेन के यात्री भी भीग जाते हैं। बारिश से जल प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सबसे भव्य रूप इसी मौसम में दिखाई देता है। हालांकि सुरक्षा कारणों से आवाजाही सीमित रहती है, जलप्रपात तक 22 किलोमीटर के ट्रैक से पहुंचा जा सकता है।
0: और यहाँ जाने का
1: से बिल्कुल
0: मतलब मार्च से अक्टूबर तक का महीना होता है वो सबसे अच्छा होता है, तो अभी आप बिल्कुल जा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। और ये जो झरना है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है और भारत के लगभग सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। लगभग 310 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है विनोद जी। और यहाँ जाने के लिए सड़क मार्ग से ये गोवा की राजधानी पणजी में लगभग 60 किलोमीटर दूर है, तो कुलेम सड़क द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है जो कि जंगल सफारी और ट्रेकिंग का शुरुआती बिंदु है।
1: आपको यह भी बता दें कि कुलेम से वन विभाग द्वारा 4 सीटर जीप चलाई जाती है जिसका शुल्क लगभग 400 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। इसमें जंगल का प्रवेश शुल्क अलग से लगता है।
0: रोमांच प्रेमी जो हमारे श्रोता हैं वो कुलेम से रेलवे ट्रैक द्वारा पैदल भी जा सकते हैं और ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप अगर एडवेंचर करना चाहते हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो जरूर इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए। और आप को ये बता दें कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की शूटिंग गोवा के ही दूध सागर जलप्रपात पर हुई थी। दूध सागर काफी प्राकृतिक सुंदरता और सिनेमाई महत्व का है। तो चलिए सुनते हैं चेन्नई एक्सप्रेस का ये प्यारा सा गीत।

0: विनोद जी, और अब खबरें खेल नगरी की। कल का दिन काफी खास था।
1: बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो 39 दिन और 104 मैच के बाद आखिरकार स्पेन ने 1-0 से वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में अर्जेंटीना के साथ हुए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ। स्पेन के फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में पहला गोल दागा। इस जीत के साथ ही स्पेन का 16 साल का इंतजार खत्म हुआ। वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में पहली बार कोई टीम अजेय रहते हुए विजेता बनी।
0: हमारी तरफ से स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने की ढेरों बधाइयां। और इंग्लैंड ने निर्णायक मुकाबले में भारत को 27 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। साल 2018 के बाद टीम इंडिया के खिलाफ यह उसकी पहली सीरीज जीत रही। इसके पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने लॉर्ड्स पर 387 का सबसे बड़ा टोटल बनाया था।
1: और अगर हम बात करें तो अमेरिका की घरेलू T20 लीग MLC यानी कि मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स ने इतिहास रचते हुए वाशिंगटन फ्रीडम को रोमांचक फाइनल में 1 रन से हरा दिया।
0: और बैडमिंटन की बात करें तो 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराकर विजेता बनी हमारी सिंधु। और अब घड़ी की सुइयां बिल्कुल इशारा कर रही हैं श्रोताओं कि हम आपसे यहीं विदा लें। तो अपने दोस्त मीता और
1: विनोद को दें इजाजत।
0: नमस्कार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपके पसंदीदा गीतों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त मीता। और अपने श्रोताओं का हम समझते हैं, मनःस्थिति को उनकी समझते हैं हम, कि इस वक्त वो अपने पसंद के फिल्मी गीतों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो हमें पत्र लिखते हैं और हम भी बहुत कद्र करते हैं उनकी भावनाओं का और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक उनके पत्रों को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो चलिए आज भी देर ना करते हुए हम उनके पत्रों को शामिल करते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद में और पढ़ते हैं उनके नाम, बताते हैं कहाँ से लिखा है उन्होंने इस पत्र को। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक, मीता बीरक, कोटवा नारायणपुर बलिया से लिखा है इस पत्र को ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से ये पत्र आया है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। आइए, इन सभी ने फरमाइश में लिखा है फिल्म का नाम हीरो नंबर वन और सुनना चाहते हैं इस फिल्म का ये गीत उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाजों में। समीर के शब्द हैं और आनंद मिलिंद का संगीत। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बागी से, आवाजें मेड ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर की है, शब्द हैं कुमार के और संगीत मेड ब्रदर्स का। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की, आप हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिमा कौर, बिहार कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत फिल्म बागी से।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राज से। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं। समीर के बोलों को सुरों में पिरोया है नदीम श्रवण ने। सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गहवानकर, वैशाली गहवानकर, श्वेता सुमित गहवानकर और कुमारी ध्वनि गहवानकर परी।

और अब हम सुनवा रहे हैं अपने इन प्यारे श्रोताओं के अनुरोध पर फिल्म शान का ये गीत आशा भोसले और पंकज उदास के युगल स्वरों में, बोले हैं आनंद बख्शी के और संगीत आरडी बर्मन का। सुनने के ख्वाहिश रखते हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रूबीना वसीम बाबू, आरिज वसीम बाबू, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिहा नाज, शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजहत जहाना नाज, शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहान नाज।

जवान दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल है तुम्हारा से। इसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं मेहर नगर उमेर खेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गहवानकर, राही सरिता गहवानकर, सिद्धांत गहवानकर, प्रिंस एकांश गहवानकर, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

सतह एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12 बज चुके हैं। ये समय है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज की गृह लक्ष्मी आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रही हैं सुमन तिवारी और मधु चौबे। प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: कार्यक्रम सुनैया सब श्रोता बहिन मन के सुमन बहिन बटले जोहार आसरा करीला हमरे कर सब श्रोता बहिन मना खाल खबर नगदे नगद होवी है नी और संगे है मधु बहिन राउत को हो जोहार
1: जोहार सुमन बहिन संगे है सब श्रोता बहिन मन के भी जोहार और कहो का हाल खबर है सुमन बहिन
0: हमर तो सब बेसे बेस है मधु बहिन लेकिन बहिन मन के एगो बात जे है से बताए भी चाहिए कि आज एगो खास दिन है आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हके जे कि हर बरिस 20 जुलाई के मनाल जाएला ई चंद्रमा दिवस कर मुख्य उद्देश्य लागे कि चंद्रमा कर शांतिपूर्ण उपयोग करे अंतरिक्ष कर अन्वेषण में वैश्विक सहयोग और भविष्य कर चंद्र अभियान कर प्रति आदमी मनक जागरूकता के बढ़ाए
1: नील आर्मस्ट्रांग कर ऐतिहासिक कदम है ई दिन 1969 के ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन कर वर्षगांठ कर प्रतीक है यही दिन नासा कर अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा कर सतह कर कदम राखे वाला पहला मानव है
0: सही कहली और देखो कि भारत अपन जे अंतरिक्ष का कार्यक्रम इसरो कर माध्यम से चंद्रमा कर खोज में महत्वपूर्ण अनेकों उपलब्धि हासिल कर है चंद्रयान 1 2008 ई मिशन चंद्रमा में पानु कर खोज कर रहे और इकर बादे चंद्रयान 2 2019 अलग जेकर की ऑर्बिटर असफल लैंडिंग कर बावजूद सक्रिय रहलक और चंद्रयान 3 2023 में दक्षिणी ध्रुव कर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करलक और आगामी मिशन में चंद्रयान 4 है जे कि चंद्रमा से नमूना वापस लाने कर काम करी और चंद्रयान 5 जे कि जापान कर संगे हैं संयुक्त मिशन है और जे चंद्रमा में बर्फ और पानी कर अध्ययन करी जेके की बरिस 2027-2028 में लॉन्च करे कर योजना है नहीं?
1: हाँ बिल्कुल सुमन बहिन ई दिवस खास कर के युवा मन के और विद्यार्थी मन ले भी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित कर प्रति रुचि के बढ़ाए के संगे अंतरिक्ष अन्वेषण कर क्षेत्र के भविष्य कर संभावना के भी दर्शाएला
0: और
1: अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कर पहला वैश्विक उत्सव सुमन बहन 20 जुलाई 2022 के होए रहे
0: सही कहली और देखो मधु बहन जे अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जे है अतीत कर एगो घटना के याद करे कर दिन भर नखे बल्कि ई मानव कर उ आदम्य इच्छा शक्ति कर भी उत्सव है जे की सीमा के नी माने और चांद तक पहुंचे ई बात कर भी प्रमाण है कि जब इंसान विज्ञान तकनीक और जब कोई भी बड़ा संकल्प कर लेवेला तो जे भी संगे भेटाएल तो इके असंभव दिशे वाला सपना भी सच हो जाएला है नी
1: 20 जुलाई के जब हमरे आसमान में चमकत चांद के देखो तो हमरे के नासा कर उ साहसी अंतरिक्ष यात्री मन कर संगे संगे इसरो कर उ वैज्ञानिक के भी नमन करे के चाही जे की अपना कड़ा मेहनत से अंतरिक्ष में भारत कर परचम लहराए हैं
0: सही कहली और चंद्रमा अब खाली दूर कर उपग्रह ना लागे बल्कि मानव जाति कर भविष्य के अंतर ग्रहीय सफर कर पहला पड़ाव बन जाए और नील आर्मस्ट्रांग जो हैं वो चांद कर धरती पर कदम रखते हैं जे कहले कि ई एक इंसान ले छोटा कदम है लेकिन मानवता कर खातिर एक

0: बहुत बड़ा छलांग ना लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुमन बहन,
0: अगर हमरे ये बात पे देखो तो हमरे देश में बहुत कम वैज्ञानिक मन है जे आज चांद में भी कदम राइप चुके हैं, है नी। तो चलो हमरे ये तो गोठियाले और गोठियाते रहब, आगे हमरे कोई जुगाड़ कर ही तो कौन गीत के सुनवा थी आज बहिन मन के।
1: यशोदा देवी और साथी के नागपुरी लोकगीत सुनवा थे।
0: चलो तो हमरे पहला गीत सुन ले ला, नागपुरी लोकगीत है जे की यशोदा देवी और संगीमन कर गावल है नी।

0: ई रहे नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगी मनकर गावल। और अब चलू एगो जानकारी करी रहा हमरे। देखो मधु बहिन, छुआ मंच कर जो बौद्धिक विकास है उखरले में खेल कर तो बहुत महत्व है। और जब खेल कूद से ही उमन कर जो मानसिक विकास है, स्वास्थ्य कर विकास है, हर तरफ अच्छा मानल जाए लाई खेल बिल्कुल छुआ मन ले। तो शतरंज कर खेल भी इकरे में से एक मानल जाए है। इकरे बारे में हमने बताया थी कि हमरे का छुआ मन लेगिन उमन कर बौद्धिक विकास में शतरंज कर जो खेल है एक कालक है, सहयोगी है। तो इकर बारे हमरे से बतिया है अनीता सहाय और इनकर से बातचीत जो कर है वो है मधु बहिन।
1: सख्यो, आज एक माँ एक अभिभावक के तौर पर हम सभी की सबसे बड़ी चिंता है बच्चों का सही मानसिक और बौद्धिक विकास। क्योंकि आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे स्क्रीन से चिपके रहने लगे हैं, वहीं उनकी एकाग्रता और सोचने की क्षमता पर गहरा असर पड़ने लगा है। ऐसे में शतरंज का खेल एक बेहतरीन मानसिक टॉनिक साबित हो सकता है। खेल खेल में हम अपने बच्चों को मानसिक मजबूती कैसे दे सकते हैं, कुछ इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए आज हमने बातचीत की है आज ये खास मेहमान अनीता सहाय जी से। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी से स्नातकोत्तर किया है और बच्चों के साथ बहुत समय तक कार्य भी किया है। और सखियों, आज का विषय भी आपको बता दें, आज का विषय है बच्चों का बौद्धिक विकास, शतरंज का खेल। नमस्कार अनीता जी।
2: नमस्ते मधु जी, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: थैंक यू मधु जी।
1: अनीता जी, विज्ञान कहता है कि बचपन में हमारा दिमाग बहुत लचीला होता है
2: जी।
1: शतरंज जैसी जटिल रणनीतिक प्रक्रिया बच्चों के दिमाग को किस तरह से प्रभावित करती है?
2: जी बिल्कुल मधु जी, बचपन में हमारा दिमाग बहुत लचीला होता है और बहुत जल्दी सीखने की तरफ, बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। साइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि दिमाग अपने नए अनुभवों के हिसाब से खुद को हमेशा ढालता रहता है। और जब शतरंज खेलते हैं बच्चे, अपने हर चाल के पहले सोचना, उसके बाद सोचना, मैं ये चलूं तो सामने वाला क्या चले, तो वो हमारे बौद्धिक दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। हम प्लान बनाना सीखते हैं, फैसला लेना सीखते हैं, तो इससे ये दिमाग काफी प्रभावित होता है। इससे दिमाग का वो हिस्सा मजबूत होता है जो सही निर्णय लेने, जल्दबाजी से बचने के लिए धीरे धीरे बच्चे को तैयार करता है। वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने की बजाय ना, सोच समझकर फैसला लेना सीखता चला जाता है। यही आदत वो आगे आगे फिर पढ़ाई में भी, फिर जिंदगी में भी, ये आदतें उसको काफी मदद करती हैं जिंदगी में भी।
1: अनीता जी, आज की पीढ़ी की एकाग्रता की अवधि बहुत छोटी होती जा रही, वो तुरंत परिणाम पर पहुंचना चाहती है। शतरंज में एक जीत के लिए घंटों धैर्य रखना पड़ता है। सब्र का यह गुण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित करता है?
2: जी मधु जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के समय में बच्चे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हर चीज उनको अभी और तुरंत चाहिए, चाहे मोबाइल हो, गेम हो, चाहे कोई भी रिजल्ट हो। लेकिन शतरंज का खेल तो होता ही इसके बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आप जीतने के लिए कई बार आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है, हर चाल के प्रति सामने वाले की प्रतिक्रिया को सोचना पड़ता है, फिर सब सोच समझ के चाल अपनी चलनी होती है। तो ये बच्चे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ से डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाता है, मतलब अभी धैर्य रखेंगे तो परिणाम और बेहतर होगा। तो बच्चे इससे इंतजार करना सीखते हैं, उनके अंदर धैर्य का गुण बढ़ता है। और वो अगर तनाव की परिस्थिति अपने जीवन में उनके आती भी है ना, तो धैर्य की वजह से वो ज्यादा शांत रहते हैं। ऐसे बच्चे जो चेस खेलते हैं वो जल्दी हार नहीं मानते और लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, तो ये गुण, ये खेल ये गुण तो बढ़ाता है बच्चों में
1: जी। बहुत अच्छा आपने कहा कि शतरंज धैर्य को बढ़ाता है। शतरंज में हर हारी हुई बाजी यह बताती है कि गलती कहाँ हुई। आमतौर पर बच्चे गलती होने पर सोचते हैं कि हमसे तो ये गलती हुई ही नहीं, या फिर गलती मान भी ले तो निराशा से घिर जाते हैं। क्या शतरंज बच्चों को अपने गलतियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना सिखाता है? यदि हाँ, तो वो कैसे?
2: जी, ये शतरंज जो है वो बच्चों को अपनी गलतियों से ही सीखना सुधारना और सीखना सिखाता है
1: जी
2: कि हमारी गलतियां, क्योंकि जब आप शतरंज खेल रहे होते हैं, कई बार हार जाते हैं और अपनी पूरी बाजी को दोबारा देखते हैं, समझते हैं, तो आप उसमें यही ढूंढते हैं कि आपसे गलती कहाँ हुई और अगले खेल में क्या किन किन गलतियों को दोहराना नहीं है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बजाय कि अरे हमने तो ये गलती की ही नहीं, तो उन्हें अपने गलतियों को देखने की आदत पड़ती है और उसको जैसे जैसे सुधारते जाते हैं तो उनकी जीत के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का गुण उनमें इम्प्रूव होता चला जाता है। धीरे धीरे बच्चे को समझ में आता है कि हार का मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि मुझे अपनी रणनीति को और बेहतर कैसे करना है। और ये अपनी गलतियों को समझ के और उन्हें नहीं दोहरा करके ही ये करते हैं, तो इससे बच्चे की आत्मविश्वास भी ये बढ़ाती है और वो गलतियों से भागते नहीं है बल्कि अपनी गलतियों को खुद समझना और उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये आदत में बदल जाती है तो ये आदत जीवन के हर क्षेत्र में उनको सफलता दिलाने में मदद करती है।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं नीता जी, कि शतरंज के खेल में वह भी स्थिति आती है जब बोर्ड पर राजा चारों तरफ से घिर जाता है, तब वह पैनिक होने की बजाय रास्ता ढूंढने का समय होता है। असल जीवन के संकटों या परीक्षाओं के दबाव में बच्चे शांत रहकर रास्ता निकाल सके, इसके लिए शतरंज उन्हें मानसिक रूप से कैसे तैयार करता है?
2: हाँ, शतरंज की खेल में कई बार ऐसा होता है कि जब आप अंत की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब लगता है अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी उसमें घबराता नहीं है, वो रुक के सोचता है कि और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, मतलब कोई ना कोई विकल्प। कई बार आप सामने वाले को हराने, आपका आपको लगता है कि आपने ऐसी चाल चल दी कि अब सामने वाला तो हार ही जाएगा, और जब सामने वाला आपसे भी भारी खिलाड़ी होता है तो वो सामने से ऐसी चाल चलता है कि एक चाल में आप हारने के कगार तक पहुंच जाते हैं। तो ये देखते खेलते बच्चा समझने लगता है, वो घबराता नहीं है, वो रुक के सोचता है कि अभी भी कुछ विकल्प होंगे और उन विकल्पों को वो तलाशता है। तो बार बार ऐसा करने से बच्चे को आदत पड़ने लग जाती कि मुश्किल आए तो घबराना नहीं है बल्कि शांत रहकर समाधान ढूंढना है कि कोई ना कोई विकल्प आगे की तरफ, जीत की तरफ लेके जा सकता है, ये वो सीखते हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि आज के समय में भी ये गुण बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतना इतनी तरह की चैलेंजेस हैं लाइफ में कि आप हर स्टेप पे तो जीत नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ता है। और किसी को भी एक बार में जीत, मधु जी, बहुत कम लोगों को मिल जाती है, तो कई बार हारने के बाद भी प्रयास को नहीं छोड़ना, कोशिश करते रहना, कोई तीसरे कोई चौथे अटेम्प्ट में इतनी बड़ी जीत हासिल, बहुत बड़ा मुकाम पा लेता है, लेकिन अगर वो अपने पहले प्रयास पे ही रुक जाता तो वो तीसरे प्रयास तक पहुंचता ही नहीं। और ये खेल भी ऐसा ही सिखाता है कि अपने प्रयास को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, शांत रहकर समाधान कैसे ढूंढना है, ये दिमागी ताकत को बढ़ाता है, आपके सोचने की शक्ति को डे बाय डे इम्प्रूव करता रहता है। तो कोई भी परीक्षा जो है वो आप हार जाते हैं, चुनौती हार जाते हैं, फिर उसके बाद आपने उठने की, लड़ने की और अगले प्रयास की तरफ बढ़ने की ये हैबिट डेवलप करता है शतरंज का खेल।
1: बिल्कुल। चलते चलते हमारी श्रोता सखियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? किस उम्र से बच्चों के हाथ में शतरंज का मोहरा थमाना चाहिए?
2: ये खेल तो बहुत बच्चों के लिए मददगार साबित होगा, उनके दिमागी ताकत को बढ़ाने वाला होगा, बट मुझे लगता है कि 6-7 साल के बाद बच्चों को मैंने ये खेल खेलते समझते देखा है। पर आप चाहें तो शुरुआत और पहले कर सकते हैं कि इस नाम बता सकते हैं, आप उनकी चाल बता सकते हैं, बट खेल को नियम समझ के अच्छी तरह से 7-8 साल की उम्र से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और मेरी सलाह माता पिता से रहेगी कि बच्चे को जीतने का दबाव मत डालिए, बस खेलने का, प्रयास करने का, स्ट्रेटजीज बनाने का, खुद को अपने आप से वो विकसित उस तरह से वो होते चले जाएंगे, हर चीज सीखेंगे। हर हार के बाद उससे एक सवाल पूछिए कि आज तुमने नया क्या सीखा, क्योंकि सामने वाला जब हमें हरा रहा होता है तभी तो हम नई स्ट्रेटजी उससे सीख रहे होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो अगर बच्चे ने ये सीख लिया कि गलती करना बुरा नहीं है बट उससे सीखना जरूरी है, तो शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं रहेगा बल्कि जीवन जीने की एक एक खूबसूरत कला बन जाएगा।
1: बिल्कुल सखियो, पूरा विश्वास है कि अनीता सहाय जी द्वारा बताई गई बातों का लाभ आप अवश्य लेंगी। अनीता जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, आपने मुझे मौका दिया आपके श्रोताओं से बात करने का, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: रहे अनीता सहाय जी की हमरे के बतात रहे कि छुआ मनकर बौद्धिक विकास में शतरंज कर खेल तालक है अपन योगदान देवेला, और इनका से बातचीत कर रहे हैं हमरे कर मधु बहिन। और मधु बहिन, ई तो रहे जानकारी, इनकर संगे कुछ गीत मनोरंजन भी हो चाहिए, तो चलो हमरे एक और गीत के सुन लेला। ई गीत भी है नागपुरी में, जानकी देवी और संगी मनकर गावल।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़ी है,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: ई रहे विज्ञापन संदेश, इकर पहले हमरे सुन ली नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और संगीमन कर गावल। और अब चलू जानी लगी हमरे कर छुआ मन ले खेल कूद कर महत्व जो है वो खाली मनोरंजन तक सीमित नखे, बल्कि ई हमरे कर छुआ ले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ले भी बहुत जरूरी है। इकर से हमरे अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता नियर जरूरी गुण के विकास कर सकेगा।
5: नियमित रूप से खेले ले तनाव से कम कई गई अपन सकारात्मक ऊर्जा बना
4: के सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकेला। और खेल कूद से मांसपेशी और हड्डी मन मजबूत होवेला है नी,
5: और हृदय स्वस्थ रहेला, संगे है मोटापा और मधुमेह नियर बीमारी मनक खतरा भी कम होवेला।
4: सही कहली। और देखो कि संगे है जब मानसिक शांति और मन के एकाग्र करेक में भी ई सहायक है। और जब छुआ मन संगे एगो टीम में खेले न तो आपसी सहयोग और भाईचारा और संगे संगे संवाद करे कर जो कला है उके भी बेहतर करे पाला। और खेल कूद कर बिना जीवन नीरस लागेला। संगे है खेल से शारीरिक और सब कोशिका सक्रिय राखे में और संगे शरीर के चुस्त दुरुस्त राखे के लिए खेल सोचे कर क्षमता के भी बढ़ाएला। और जे मन भी खेल में रुचि नहीं लेवे ना वो मन सक्रिय नहीं होवे पाएगा और कम उम्र में ही बीमारी कर खतरा भी बढ़ जाएला। तो खेल जो है हमरे कर जीवन ले बहुत आवश्यक है, जरूरी है, यह कहे चाहब। और मधु बहिन इकरे संगे हमरे कर बेरा जो है कहत है चलू। और अगला बार फिर भेटा, चलू तब तक जोहार।
5: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज इस कार्यक्रम को आपने नागपुरी भाषा में सुना। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

अभी आप सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म का ये नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा था इसे और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए से, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की है। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चोर।
1: भूल गए?
0: जानी मेरा नाम,
1: अच्छा?
0: चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम।
1: बंडल बाल
0: लड़के मिलन गीत गाता चल,
1: बेशरम
0: चार का मौसम
1: बेशरम।

चंदन झूला चंदन कंगन बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया।

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाल
1: लड़के नीलंगीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: Gotcha.
1: और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉबी का ये नगमा, शैलेंद्र सिंह का, माफ कीजिएगा, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने।

ये आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की फिल्म हाथ की सफाई के लिए। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

राज, जी हाँ, नाम है फिल्म का। आइए सुनते हैं इस फिल्म में अलका याग्निक को। नगमा निगार हैं समीर और मौसीकी है नदीम श्रवण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स।

0: The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omwati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37. Prime Minister Narendra Modi has said, be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself.
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है जीव मात्र का कल्याण होता है और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे.
0: Union Minister Dr. Mansukh Mandavia has said over 8 crore manuscripts have been digitized under the Gyan Bharatam mission. Replying to supplementaries in the Lok Sabha today, Dr. Mandavia said the Modi government has launched the Gyan Bharatam mission to preserve and digitize manuscripts to facilitate research and make them accessible to the public. Special traffic arrangements have been put in place in New Delhi during the monsoon session of Parliament 2026, which began today. In a social media post, the Delhi Traffic Police said heavy vehicular movement and traffic restrictions are expected in and around the Parliament complex. According to the advisory, the public have been advised to avoid roads such as Rafi Marg, Motilal Nehru Marg, Maulana Azad Road, Parliament Street, Ashok Road, Tarkatora Road, Rajendra Prasad Road, Janpath and adjoining stretches as traffic diversions and congestion are likely in these areas. In Assam, the flood situation has worsened as incessant rain continues across the state, affecting thousands of people in several districts of Upper Assam. Several rivers in Upper Assam are reported to be flowing above the danger level. And with that, we end this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार.
4: आकाशवाणी
3: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने का है मामला। सीएजी कार्यालय द्वारा ICSSR के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहो टोला में चलाया गया स्वास्थ्य जांच अभियान। बरसात में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह बिरहोरों के स्वास्थ्य की करेगी जांच। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में फिर हुए भूधसान की घटना में करीब 6 घर हुए ध्वस्त। BCCL प्रबंधन की सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा। और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन से महिलाओं के लिए बन रहे हैं स्वावलंबी बनने के अवसर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहो मानसून हो या फिर मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
3: झारखंड सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने राज्य के थानों में CCTV कैमरे लगाने से जुड़े मामलों में बिना सक्षम स्वीकृति के सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजी थी। सरकार ने कहा है कि संवेदनशील मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य CAG ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित मौलिक शोध करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करके सार्वजनिक वित्त, शासन, राजकोषीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र में खर्च और सतत विकास पर शोध और जानकारीपूर्ण चर्चा को बढ़ावा देना है। राज्य के शहरी क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जहां मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और भरकर जमा कर सकेंगे। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला आयोजित की गई है। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहो टोला में कुछ बच्चों और ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी भोला पांडे और रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशीष राज के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पूरे टोला में स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी भोला पांडे ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह यहां पहुंचकर बिरहोरों के स्वास्थ्य की जांच करेगी।
4: हम लोग ने देखा कि यहाँ की जो बच्चे हैं, जो कि वायरल फीवर्स वगैरह हैं, छोटे छोटे फीवर्स में, ज्यादा वैसा कोई क्रिटिकल केस नहीं है, तो उसके आधार पर अभी हम लोग दवाई दे दिए हैं और योजना बनाई है कि पहले जो है मासिक को यहाँ पे विजिट होता था, जिसको अभी जब तक बरसात रहेगा तब तक हम लोग इसको साप्ताहिक कर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक सांस्कृतिक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही तेजी से विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह जिले के जमुआ थाना परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोग खाली पड़े बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करें। श्री मरांडी ने यहां कहा कि राज्य सरकार सभी थानों का आधुनिकीकरण करे।
5: राज्य सरकार को केंद्र से पैसा लेनी चाहिए और जितना भी राज्य में थाना है सब थाना का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हर लोगों को अच्छे बैठने की जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि थाना को सीधे हम सजा का ही केंद्र क्यों बनावे, यहाँ लोग आवे तो लोग बैठ सके, उनको बैठने की भी अच्छी जगह हो, भव्य तरीके से बनाने। और जमुआ जिस प्रकार से जगह है तो यहाँ तो और विशेष सरकार को ध्यान देनी चाहिए, हम भी सरकार के संज्ञान में लाएंगे।
3: धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में कल एक बार फिर भूधसान की घटना हुई। लगातार हो रही बारिश की वजह से बारिश के बीच ही भूधसान में करीब आधा दर्जन घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित बस्ती को पुनर्वास के लिए पहले ही खाली करा दिया है। प्रबंधन की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। आज सुबह घरेलू शेयर बाजार सूचकांक में लगभग 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 592 अंक गिरकर 77,559 पर और निफ्टी 147 अंक गिरकर 24,147 पर आ गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अब से कुछ घंटों में चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत हजारीबाग में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए हजारीबाग की लगभग 15 महिलाएं 30,000 से अधिक जर्सी तैयार कर रही है। इस संबंध में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म तो दे ही रहा है, साथ ही महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है।
6: नमो फुटबॉल टूर्नामेंट केवल खेल महोत्सव जो है केवल खेल नहीं रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ रहा है। जैसे पिछले बार हम लोगों का लगभग 24,000 जर्सी हम लोगों ने दिया, इस बार भी हम लोगों का टारगेट है कि लगभग 30,000 के करीब में जर्सी दे। ये 30,000 यही के लोगों के द्वारा, यही के महिलाओं के द्वारा दिया जाए।
3: और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां समेत दो अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। खुटी चाईबासा मार्ग पर मुरहु थाना के कुड़की नाला पुल पर आज सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसमें सवार चारों युवक बच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने का है मामला। सीएजी कार्यालय द्वारा ICSSR के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहोर टोला में चलाया गया स्वास्थ्य जांच अभियान। बरसात में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह बिरहोरों के स्वास्थ्य की करेगी जांच। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में फिर हुए भूधसान की घटना में करीब 6 घर हुए ध्वस्त। बीसीसीएल प्रबंधन की सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा। और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन से महिलाओं के लिए बन रहे हैं स्वावलंबी बनने के अवसर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं शोभा गुरटू से मिस्र पहाड़ी में ठुमरी। और दादरा

अभी आप सुन रहे थे शोभा गुरटू से ठुमरी और दादरा, और इसके साथ ही अनुरंजनी यहीं समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। पेश है सुगम संगीत। आगाज करते हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह की गाई इस गजल से।

दोस्तों ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारो चार दिन भी। तो आइए इस चार दिन की जिंदगी को खुशी से जी लें।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अब पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से

0: की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
6: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। जैसा कि आपको नाम से ही पता लगता होगा, ये कार्यक्रम हमारे फौजी भाइयों के लिए है। हम उनके लिए समर्पित करते हैं इस कार्यक्रम को। कौन होगा जिसे नाज़े वतन न होगा, कौन होगा जिसे अपनी मिट्टी से मोहब्बत न होगी। हम सभी को अपने देश से प्यार है, लेकिन इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे फौजी भाई, जो देश से प्यार तो करते हैं, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा भी रखते हैं। जब कोई अपने देश से दूर होता है, अपनी जमीन से दूर होता है, या अपने शहर से भी दूर होता है, तो उसे अपनों की कमी बहुत खलती है। हमारे फौजी भाई तो हमेशा ही अपने कर्तव्य के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में जब अपनों की कोई खबर मिलती है तो दिल काफी खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। और जब अपनों से दूर होते हैं और अपनों की याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं।

देश पराया छोड़ के आ जा, अपनों से दूर किसी को भी कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ मन लगता है। फौज भाइयों, जब हम अपने देश की बात करते हैं तो सिर्फ अपने परिवार की बात नहीं करते, यहाँ की विविधता की बातें भी करते हैं, यहाँ के बहुरंगी संस्कृति की बातें भी करते हैं। यहाँ जो विभिन्न भाषी एक होकर रहते हैं उसकी बातें भी करते हैं। कुल मिलाकर हमारा देश इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है कि बस हम इसकी तारीफ जितनी भी करें कम ही लगती है।

अपने लोगों के बीच, अपने त्योहारों हंसी खुशी के दिनों के बीच, अपने कर्तव्य के लिए जब सब कुछ छोड़कर जाना होता है, तब भी बहुत याद आते हैं वो लोग, वो गलियां। लेकिन कहना है ये कि जब निकल पड़े छोड़कर, फिर पीछे मुड़कर क्या देखना, आगे देश है। और देशभक्ति की भावना के आगे कोई और भावना कहाँ काम करती है।

छोड़ आए हम वो गलियां, लेकिन फिर भी वो गलियां कहाँ भूलती हैं, वो नदियां कहाँ भूलती हैं, वो ठंडी पुरवैया कहाँ भूलती हैं, वो सावन के झूले कहाँ भूलते हैं। हमारे देश में प्रकृति भी अपने भरपूर सौंदर्य के साथ है, और जब कभी भी तन्हाई में हम बैठते हैं तो इसकी हर मीठी बात याद आती है, इसकी सुहानी शाम याद आती है, इसकी महकती भोर याद आती है, और याद आते हैं वो ठंडे पवन के झोंके।

मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हमारी नदियाँ हमारे सागर ये हवाएं सब कुछ हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे फौजी भाइयों का तो कहना ही क्या, उन्हें तो देश से इस कदर प्यार होता है कि बस हम तो उनकी मिसालें देते रह जाते हैं। आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, हम समझते हैं आपको अच्छा लगा होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और फौजी भाइयों, आपके एहसान तले दबे हैं हम, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कार्यक्रम जय भारती अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
1: अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी, सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री विभाग की वर्तमान कार्यप्रणाली, आगामी योजनाओं और अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। राज्य में

0: वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, नए पौधरोपण अभियानों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदीव्य कुमार ने गिरिडीह शहर के विकास के लिए 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का आज शिलान्यास किया है। मौके पर मंत्री ने अधिकारियों और संवेदकों को विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इन 119 योजनाओं के धरातल पर उतरने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। देवघर के महापौर रवि कुमार राउत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर शहर के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई इस बैठक में महापौर ने बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के तुपदाना थाना क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस ताजा कार्रवाई के बाद मामले में पकड़े गए कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कैग और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च मिलकर देश भर के कॉलेज छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित मौलिक शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, चतरा, पलामू और लातेहार में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। इस बीच दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के लटुलिया गांव में आज खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 135वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत गुमला जिला मुख्यालय पहुंची। जिला प्रशासन, खेल विभाग और स्थानीय खेल प्रेमियों ने सेना के जवानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर परमवीर अल्बर्टिका स्टेडियम में प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेला गया। भारतीय सशस्त्र बल और झारखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन 25 जुलाई से राजधानी रांची में होगा। मौके पर उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि यहां डूरंट कप जैसी ऐतिहासिक ट्रॉफी का आना हमारे युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बेहद गौरवशाली और प्रेरणादायक क्षण है।
1: डूरंट कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट का कप है और इस टूर्नामेंट कप का गुमला जिला में आगमन होना निश्चित तौर पर हमारे गुमला जिला के खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है और इससे हमारे गुमला के खिलाड़ी हैं, गुमला एक खेलों की नगरी माना जाता है, उसे प्रेरणा मिलेगी।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब

0: गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं। प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओ अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास।
3: कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं।
2: वहां देखो उस पेड़ पर,
3: कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है,
2: अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
3: ये राजहंस हैं,

0: ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
0: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
2: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
0: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुँचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
2: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
2: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
1: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
8: गली में बैठ के सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
1: सिद्धार्थ ने बचाया होगा कैसे?
8: देवदत्त का कर्म उनका है।
2: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
9: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
10: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
7: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
6: महाराज की जय हो।
5: महाराज की जय हो।
6: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: स्वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरु पिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जीतात,
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी,
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी,
0: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी

0: वत्स श्वेत केतु। जीतात, क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फल था। बस अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो। जी
1: पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
0: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
1: जी
0: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
1: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
0: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
1: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
0: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। त्वम् असि।
1: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
0: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। दिन के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

रांची मेलोडीज सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों रांची मेलोडीज में आइए आज सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार की फिल्मों के कुछ गाने। श्रोता साथियों, 1960 के दशक में एक ऐसा हीरो था जिसने लगातार करीब दर्जन भर ऐसी फिल्में दी जिन्होंने थिएटर में सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाई। फैंस ने उस एक्टर का नाम ही जुबली कुमार रख दिया। इनका असली नाम था राजेंद्र कुमार। करियर की 80 फिल्मों में से 35 ऐसी फिल्में थीं जो 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रहीं। राजेंद्र कुमार फिल्मों में सफलता की गारंटी माने जाते थे। राजेश खन्ना के आने से पहले राजेंद्र कुमार ही सबसे व्यस्त एक्टर रहे।

एक्स्ट्रा कलाकार की तरह छोटे रोल से करियर की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार कुछ ही फिल्मों के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की पहली पसंद हो गए थे। अविभाजित भारत के सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार बंटवारे के बाद परिवार के साथ भारत आ गए थे। मुफलिसी से शुरू हुआ दौर सफलता के उस मुकाम तक पहुंच गया कि स्ट्रगल के दिनों में मुसाफिर खाने में जिस खाट पर वो सोते थे वो खाट भी फेमस हो गई और लोग उस पर सोने के भी अच्छी खासी मोटी कीमत चुकाने लगे।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम रांची मलोडीज। आज इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार की अभिनीत फिल्मों के कुछ गाने। आपको हम बता दें आज उनका जन्मदिन है। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा में नए नए आए थे और उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। उसी समय उनके एक रिश्तेदार उनके पास आए जिसने उनकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाई। उस दोस्त ने मुलाकात के दौरान राजेंद्र कुमार से कहा, मेरी एक बेटी है, अगर तुम उसे अपने काबिल समझो तो उससे शादी कर लो। राजेंद्र कुमार ने कहा, देखिए मैं अभी मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी इस मुफलिसी में मेरा साथ दे पाएगी तो ठीक है। राजेंद्र कुमार की रजामंदी के बाद दोनों की शादी ठीक हो गई। कुछ समय बाद वो अपने दिल्ली स्थित घर लौटे तो देखा घर वाले दूसरी लड़की पसंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परिवार वालों से सम्मानपूर्वक यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी शादी पहले ही किसी और से फिक्स हो चुकी है, वो वचन दे चुके हैं और अब वो उसी लड़की से शादी करेंगे। कामयाबी मिलने के बाद परिवार के आशीर्वाद के साथ राजेंद्र कुमार की शुक्ला कुमार से शादी हुई, जो हिंदी सिनेमा के बहल परिवार से ताल्लुक रखती हैं।

श्रोताओं, उनके बंगले के बारे में भी एक रोचक कथा प्रचलित है। 60 के दशक की शुरुआत में जब राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक दिन कार्टर रोड से गुजरते हुए उनकी नज़र एक खंडर नुमा बंगले पर पड़ी। उन्हें पहली नज़र में ही वो बंगला इतना भाया कि उन्होंने खरीदने का मन बना लिया। हालांकि उस बंगले को भूतिया बंगला कहा जाता था और बहुत से लोगों ने उन्हें उस बंगले को खरीदने से मना किया। वैसे बंगले की कीमत भी 60,000 रुपये थी और इतने पैसे भी नहीं थे राजेंद्र कुमार के पास। तभी उन्हें उनके इस ख्वाहिश का पता राज कपूर साहब को लगा और उन्होंने 2 फिल्मों के एडवांस राजेंद्र कुमार को दे दिए ताकि वो बंगला खरीद सके, और इस तरह राजेंद्र कुमार ने वो भूत बंगला खरीद लिया। इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कई हिट फिल्में दी और इसलिए इस बंगले को वो लकी मानते थे। लेकिन इसके आगे की कहानी और भी रोचक है दोस्तों। उस भूत बंगले को अपने मुफलिसी के दिनों में राजेंद्र कुमार जी को बेचना पड़ा। फिर वही कहानी, कोई भी भूत बंगले को खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन ये बात जब राजेश खन्ना को पता चली तो वो इस बंगले को खरीदने को तैयार हो गए और उन्होंने उस बंगले को खरीद लिया। और फिर आश्चर्य की बात ये रही कि इसके बाद राजेश खन्ना की भी एक के बाद एक 15 फिल्में हिट रहीं।

20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे। दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। रईस घराने में उनकी जिंदगी मजे से कट रही थी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे ने उनके परिवार से सब कुछ छीन लिया। दंगों के बीच कारोबार चौपट हो गया और पूरा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। परिवार ने दिल्ली में बसना मुनासिब समझा। दिल्ली में राजेंद्र कुमार ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर दी, लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदल गया। दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में जाने की ठान ली। हालांकि दिल्ली से मुंबई आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई मदद थी। यही सोचते हुए उनकी नज़र उनकी कलाई में बंधी उस कीमती घड़ी पर पड़ी जिसे उनके पिता ने उन्हें दी थी। राजेंद्र कुमार की वो घड़ी उनका समय बदलने वाली थी। उन्होंने उस घड़ी को 63 रुपये में बेचा, 13 रुपये में बॉम्बे की टिकट खरीदी और 50 रुपये जेब में लेकर निकल पड़े और इस तरह भारतीय सिनेमा को मिला एक सुपरहिट हीरो, उनका जुबली कुमार।

12 जुलाई 1999 को 72वें जन्मदिन के ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आज रांची मेलोडीज में इतना ही। आप सुन रहे थे अभिनेता राजेंद्र कुमार द्वारा अभिनीत कुछ फिल्मों के गाने अपनी रेडियो सखी मीता के साथ। और अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 4 बजे हैं। सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के वांछित उग्रवादी नरेश गंजू और रविकांत को लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सिमरिया एसडीपीओ ने बताया कि इस उग्रवादी पर हत्या, रंगदारी और पुलिस पर हमले सहित 6 मामले दर्ज थे। पुलिस और एसएसबी का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। हजारीबाग पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार के निर्देश पर 28 टीमों में शामिल 91 पुलिसकर्मियों ने ये कार्रवाई की। एसपी ने अपराधियों की धरपकड़ जारी रखने की बात कहते हुए आम जनता से सहयोग की अपील की है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में आज करंट लगने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। कोटेग सेरा स्थित मौसीबाड़ी के पास छात्र एक रथ को घुमा रहे थे, तभी वह 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में विधायक कल्पना सोरेन ने सदस्यों के साथ महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता अगुआ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वर्ण रेखा महिला समिति की अध्यक्ष रेणु सहगल ने पतरातु पीवीयूएनएल टाउनशिप में प्रगति 2.0 टेलरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य हनुमानगढ़ी, शाह कॉलोनी और कटिया गांवों की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से ग्रामीण महिलाएं कौशल विकास कर स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आओ साथ चलें, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सिंधु मिश्रा के साथ। प्रस्तुति एवं संयोजन है प्रभु शर्मा।

0: नक्सलियों को 1 करोड़ से लेकर न्यूनतम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस नीति के तहत नगद के साथ साथ नक्सलियों को जीवन यापन के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। न केवल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास बल्कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार द्वारा नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के इस पर विशेष ध्यान से नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं। श्रोताओं, समाज की मुख्य धारा से भटक चुके और अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मसमर्पण नीति का लाभ ले रहे एक भाई से आइए सुनवाती हूँ बातचीत। मुख्य धारा से जुड़कर आत्मसमर्पण का नीति का लाभ लेते हुए आज एक और भाई कार्यक्रम में शामिल हैं, जो अपने परिवार के बीच वापस आ चुके हैं और अपने गांव में रह रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैं चाहूंगी कि आप अपना पूरा परिचय, आप कहां रह रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ और परिवार में कितने लोग आपके हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मेरा नाम दिनेश यादव उर्फ उमेश विकास, ऐसे दर्जनों नाम है। ग्राम हितडीहा थाना मनातु पलामू जिला के रहने वाला हूँ और मैंने भाकपा माओवादी में 20 वर्षों तक रहा हूँ और बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य थे। 12 अप्रैल 2016 को मैंने झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत से प्रभावित होकर 12 अप्रैल 2016 को लातेहार पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ा हूँ और इसके बाद लगभग 2 वर्ष तक जेल में रह करके सभी जितना भी केसे लगी मेरे ऊपर वो सभी को निष्पादन करवाए कानूनन और 9 मार्च 2018 को जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद और जेल के अंदर में रह करके भी मैंने सैकड़ों लोगों को प्रोत्साहित करके और माओवादी संगठन या टीपीसी संगठन या पीएलएफआई संगठन में जो लोग संपर्क में थे या जो संपर्क में नहीं थे वैसे लोगों से संपर्क करके दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को आत्मसमर्पण करवाया और आज अपने परिवार के बीच अधिकतर लोग निकल करके रह रहे हैं और कुछ लोग अभी जेल में ही हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति बहुत अच्छी है लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया जा रहा है, यानी जिस तरह से प्रभावी ढंग से उसको लागू करना चाहिए उसको लागू नहीं किया जा रहा है। पहली बात है कि हम लोग जब संगठन से आए यहाँ पर तो बहुत सा हम लोग को सपना दिखाया गया कि मुख्यधारा में जुड़िए, आपको यहाँ नौकरी दिया जाएगा, योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज हम अधिकतर लोगों को देखते हैं कि बेरोजगारी के रास्ते पर आकर खड़े हो गए हैं। अपना परिवार चलाना मुश्किल है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना मुश्किल है, बहुत तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। आत्मसमर्पण नीति के तहत बहुत सा लाभ लेने की बात उसमें लिखी गई है, इसमें कुछ लोग तो कुछ मिला है लेकिन हमको तो अभी तक ना केस लड़ने के लिए पैसा मिली है, ना बच्चे के पढ़ाने लिखाने के शिक्षा के कोई पैसा मिली है और ना मैं आज मेरे पास कोई रोजगार है, बेरोजगारी के कगार पर आके खड़े हुए हैं। अपने हिसाब से मेहनत करके चाहे जैसे भी हो, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची, दोनों को पढ़ाए लिखाए हैं, एक स्नातक करके घर में बैठे हुए हैं बेरोजगार और दूसरा स्नातक कर रही है संजय बीर कॉलेज रांची से।
0: एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि प्रशासन और सरकार की जो नीतियां बनाई गई हैं आत्मसमर्पण करने के बाद वो हमारे भाई बहनों को अभी भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है और जितनी लाभ देने की बात उसमें कही गई है वो भी लाभ उनको नहीं मिला है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जंगल में जो आप भटक रहे थे, जो हिंसा का

0: रास्ता आपने इख्तियार किया था, तो उस जीवन से निकलकर अब परिवार के बीच लौटने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: आत्मसमर्पण करने के बाद मैंने जब से मुख्य धारा में जुड़ा हूँ, जेल से निकलने के बाद तो अच्छा लगा। और अधिकतर लोग आज आत्मसमर्पण करके जेल से बाहर आने के बाद परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं। आत्मसमर्पण करने के पहले मैंने 20 वर्षों तक जंगल में भटका। 20 वर्षों के बाद आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के कुछ पुलिस अफसर लोग के संपर्क में आने के बाद मुख्य धारा में जुड़ा हूँ। और निकलने के बाद लगा कि समाज में अच्छा है और इसीलिए बहुत लोगों को आत्मसमर्पण करवा के मुख्य धारा में जोड़े भी। आत्मसमर्पण करने के बाद बहुत लोग को अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत लोग का अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों, लगभग सैकड़ों लोग को आत्मसमर्पण करवाया।
0: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अमूमन इस ओर, यानी जो मुख्य धारा से भटक जाते हैं, वो अमूमन किस उम्र वर्ग के लोग ज्यादा हैं?
1: मुख्य धारा में भटकने का दो तीन कारण है। एक तो है कि हम लोग जिस समय संगठन से जुड़े थे उस समय पलामू में या अन्य जगहों में समाजवादियों का राज चलता था, शोषण दमन अत्याचार रहती थी। बस में बैठते तो जो दबंग लोग थे वो लोग सीट से उठा करके बैठ जाते थे, नहीं उठने पर मारपीट करते थे। एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारा अत्याचार होता था। तो उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय डाल्टन कॉलेज में, तो माओवादी विचारधारा के जो स्टूडेंट संगठन है उस समय था RSL, उस संगठन से मैं जुड़ा था। वो संगठन वो पहले वह बोल करके नहीं जोड़े कि हम माओवादी हैं या MCC हैं, लेकिन वो अपना हिसाब से काम कर रहा था। उस जुड़ने के बाद, उनसे जब ये सब देखने के बाद प्रभावित होकर के उस संगठन से जुड़े और बाद में धीरे धीरे MCC के साथ जुड़ गए, वहाँ से चले आए। मैंने 20 वर्षों तक वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद भी हम लोग बहुत सारा विकास के कार्य करने का कोशिश किया। मैंने अपने वहाँ रह करके, आपको लातेहार जिला के बालूमा थाना अंतर्गत पड़रिया एक जगह है, वहाँ बहुत बड़ा हम लोग डैम बनाए, आज वहाँ का किसान का सिंचाई हो रहा है। मेनका में एक जगह है रेवद, यहाँ आपका कोरित बयान, वहाँ भी एक डैम बनाया, वो भी आज बहुत लोग के गांव में सिंचाई हो रहा है। ऐसे हम लोग उस समय काम कर रहे थे कि संगठन में जो पहले पैसा आमदनी आती थी उससे समाज के काम भी हम लोग करते। बहुत सारा स्कूल भी खोले हुए थे, बहुत सारा हॉस्टल खोले हुए थे, जैसे मटलोंग में जो स्कूल खुला अभी CRPF का बैठाया है वो भी हम लोग खोल करके उसमें चला रहे थे। तो ऐसे दर्जनों हम लोग बड़े बड़े स्कूल और छोटे छोटे स्कूल भी खोले। तो उस समय लगता था कि शिक्षा के लिए हम लोग या समाज के लिए हम लोग विकास के काम करेंगे। और हम लोग को वही रास्ता दिखाया गया था कि एक रास्ता है माओवाद का, दूसरा रास्ता है गांधीवाद का। जो वर्तमान व्यवस्था है गांधीवाद का रास्ता है और दूसरा रास्ता है माओवाद का, जो चीन में क्रांति हुआ था 1949 में, और माओवादी क्रांति, वहाँ माओवादी के नेतृत्व में क्रांति हुआ और उस क्रांति सफल होने के बाद वहाँ का समाजवाद आया चीन में। तो ऐसा हम लोग का भी सपना दिखाया गया था यहाँ के नेताओं के द्वारा, या जो पुस्तक मिलता था उसको पढ़ने को हम लोग मिलता था कि भारत में भी हम लोग ये गांधीवादी असमानता वाला जो राज है, असमानता वाला देश है, इसको मिटा करके हम लोग समानता लाएंगे, समाजवाद लाएंगे, लास्ट में साम्यवाद लाएंगे, यही हम लोग का लक्ष्य था। इसी के तहत काम कर रहे थे। लेकिन लंबे समय तक काम करते हुए हमने देखा कि जब दौर बीतते गया तो नए नए लोग जुड़ते गए। अधिकतर लोग, कुछ लोग तो बेरोजगार नौजवान लोग आए, कुछ ऐसे लोग लाए जो आपस में अंतर विरोध है किसी के खेत के लिए, जमीन के लिए, या गांव घर में कुछ छोटा मोटा झगड़ा है, तो उससे साधने के लिए बहुत लोग आ गए। अब बहुत लोग आए यहाँ पर कि बेरोजगार होने के चलते कोई काम नहीं है, तो चलो जुट जाओ उधर। यहाँ आने के बाद ये माओवादी का तो सिद्धांत बहुत अच्छा था कि हाँ समाजवाद लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो नए पीढ़ी आया उस समाजवाद के रास्ता छोड़ करके पूंजीवाद के रास्ता में अपने पूंजी बनाने के लिए, पैसा उगाही करने के लिए जनता के ऊपर शोषण दमन अत्याचार करने लगे। जो समाज के न्याय दिलाने के लिए काम

0: कहते तो वही समाज में मैंने दूषित फैलाने लगे। और जैसे हम लोग जैसे आदमी अच्छे आदमी को बोलने के बाद अंदर अंदर अपना कुढ़ता रहा, बाद में अपना हथियार हाथ में है ही, तो वो हथियार लेकर के अलग संगठन बना लिया, बहुत लीडर लोग को मार दिया या अलग संगठन बना के अलग नाम से पैसा वसूलने लगा, जैसे TPC हुआ, PLF हुआ, ऐसे बहुत सारा संगठन बना जो माओवादी MCC से टूट करके ही बना। तो ऐसे भटके लोग आए संगठन में और वो लोग भटकाव लाए और रास्ता जो है ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे दूसरे ओर चल गए। और वही हम लोग देखे कि अब ये रास्ता से हम लोग समाजवाद तो लाना दूर है, बल्कि हम लोग के यहाँ जान देने से भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर आया कि हम लोग आज आत्मसमर्पण की नीति के तहत हम लोग रास्ता खुल गया, इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ करके आ गए। लेकिन हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि हम लोग ये जंगल से छोड़ करके कभी शहर में जा सकते हैं। हम लोग तो यही सोचे थे कि हम लोग के कहानी लास्ट यही जंगल में ही होगा, यही अंत होगा, हम लोग के परिवार के साथ रहने का भाग्य नहीं है। लेकिन सर झारखंड सरकार द्वारा आत्मसमर्पण नीति लाई, बहुत अच्छी नीति है, उसी के तहत हम लोग आए, बहुत लोग को लाए। आज ऐसा स्थिति है कि आज लगभग नक्सलवाद समाप्त की ओर है, कमी यही है कि अन्य राज्यों के जैसा यहाँ आत्मसमर्पण नीति नहीं है। जैसे अन्य राज्य में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है या और कई राज्यों में ऐसा आत्मसमर्पण नीति है कि आत्मसमर्पण करने के बाद उसको जेल नहीं जाना पड़ता है, बाहर से बाहर ही सारा केस का निष्पादन होती है। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है, यहाँ तो आत्मसमर्पण करने के बाद जेल जाता है, आज सालों साल बहुत लोग जेल में रहे, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 7 साल 8 साल से भी जेल में बंद हैं, और बहुत लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको सजा हो गई है। लेकिन यहाँ तो आत्मसमर्पण नीति में बोला गया कि भाई यहाँ आपको केस में निष्पादन करने के लिए आपको मदद मिलेगा, यहाँ आपको सजा नहीं होगी, यही सब लोग बोल करके लाए। अगर वहाँ के नीति के अनुसार यहाँ लागू होता तो जो बचे हुए लोग थे वो लोग बहुत जल्दी से आत्मसमर्पण करते, और हमको लगता है कि आत्मसमर्पण करने के बाद पूरा इलाका खाली हो जाता, विकास की ओर आगे बढ़ता।
1: एक बात और मैं जानना चाहूँगी, आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, बिटिया भी स्नातक कर रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ सुनहरे सपने देखे होंगे, कुछ भविष्य उनका सोचा होगा, क्या लक्ष्य है उन लोगों का?
0: जैसे सब लोग अपने बच्चे के लिए सपना देखता है वैसे हम भी देखते हैं, लेकिन अब तो बच्चे के ऊपर निर्भर है कि क्या कर सकता है। मेरा जो कर्तव्य था पढ़ाना लिखाना, मैंने चाहे जैसे भी हुआ जो भी करना पड़े वो करके हम पढ़ाए लिखाए हैं। सपना तो बहुत लोग देखते हैं और हम भी देखते हैं, तब बच्चे के ऊपर निर्भर के क्या कर सकते हैं।
1: आपने अपनी बातों में एक बात बताई कि आप 20 सालों तक जंगलों में रहे और वहाँ भटकते रहे, बहुत सारी समस्याएं भी आपने झेली, उसके बाद जब आपकी वापसी हुई तो परिवार के चेहरे पर कैसी खुशी आपने देखी और गांव वालों ने किस तरह से आपको देखकर अपनी खुशी व्यक्त की?
0: आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़े, इसके बाद घर परिवार के लोग से मिले, गांव घर के लोग से मिले आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद, या जब हम आते थे तो उसमें कोर्ट में जब जाते थे केस निष्पादन के लिए, तो जो लोग जानते थे, जो लोग सब मिलते थे पहले, जिनके साथ अच्छा रिश्ता था, वो लोग सैकड़ों लोग आकर के भेंट करने के लिए कोर्ट में पहुंच जाता था, और आज भी वो रिश्ता कायम है कि जब भी गांव में जाते हैं तो लोग मिलने के लिए आते हैं, और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग आते हैं, मिलते हैं और खुशी मनाते हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात है। अब अंत में मैं चाहूंगी कि जो आपने कहा कि अब समाप्ति की ओर है, ये एक तरह से नक्सलवाद कहा जाए, तो जो हमारे भाई बहन अभी भी बचे हुए हैं जो आत्मसमर्पण नहीं किया है उन लोगों ने, उन लोगों को आप अपनी ओर से मुख्य धारा में वापस आने के लिए क्या संदेश देंगे?
0: जो मेरे भाई बहन या पहले जो नेता के रूप में नेतृत्व कर चुके हैं, अभी भी जंगल में भटक रहे हैं, जैसे मिसिर बेसरा हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो जंगल में भटक रहे हैं, तो उनसे हम आह्वान करेंगे अनुरोध करेंगे कि आत्मसमर्पण नीति बहुत अच्छी है और इसके तहत हथियार त्याग करके आत्मसमर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य है, जो हम लोग ने लक्ष्य तय किया था, जो हम लोग ने पढ़ा था, जो हम लोग ने समझा था, जो हम लोग को बताया गया था कि हम लोग को समाजवाद की ओर जाना है, साम्यवाद लाना है भारत में, तो हमको नहीं लगता है कि वो संभव है आज के परिस्थिति में। वो परिस्थिति बदल चुकी है, इसलिए आत्मसमर्पण करने का हम आह्वान करेंगे, क्योंकि ये जीवन है, जीवन बहुत कीमती है, इसको वहाँ रह करके समाप्त कर देने से कुछ फायदा नहीं है, ना आपके लिए कुछ फायदा है, ना आपके परिवार के लिए फायदा है, ना समाज के लिए फायदा है। आप ना समाज के बीच जा पा रहे हैं, ना एक मीटिंग कर पा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि जंगल में भाग भाग कर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छिप करके पुलिस से मुठभेड़ होती है, गोली चलता है, कभी एक मराते हैं, कभी दो मराते हैं, कभी पुलिस मराते हैं, कभी आप मरते हैं, तो उससे किसी का फायदा नहीं है, ना सरकार का फायदा है, ना पुलिस का फायदा है, ना आपके लिए फायदा है। पुलिस भी अगर मरती है तो वो भी हमारे ही समाज के बच्चे हैं या हमारे समाज के लोग ही हैं। अगर नक्सली जो मारे जाते हैं तो वो भी हमारे समाज के हैं, वो कोई साम्राज्यवाद या पूंजीवाद के लिए बच्चे नहीं हैं। इसलिए हम आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि जो भी बचे हुए हैं वो आत्मसमर्पण करके और मुख्यधारा में जुड़ें, आत्मसमर्पण का लाभ लें।
1: बहुत ही अच्छे संदेश आपने दिए और मैं समझती हूँ कि आपकी बातों को सुनकर जो हमारे भाई बहन अभी भी मुख्यधारा से भटक कर जंगलों में अभी भी अन्यत्र घूम रहे हैं, तो वैसे भाई बहन की वापसी जरूर होगी।
0: हम कुछ आत्मसमर्पण नीति में जो सब कुछ है वो तो अच्छा है, उसको लागू होना चाहिए। हम अपनी सरकार या यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनसे अनुरोध करेंगे कि आत्मसमर्पण करने वाले जो भी नक्सली कहिए, जो आप लोगों के बीच आज जुटे हुए हैं, उनको सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से हर समय मदद मिलना चाहिए। और जो एक बार सरेंडर कर दिया उसका केस एक ही बार में सब खत्म हो जाना चाहिए, उसको बार बार जेल जाने की नहीं जरूरत पड़े, ये ऐसा प्रावधान करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको लाल वारंट निकाल करके आज पुलिस खोज रही है या उठा करके अचानक भेज दे रही है, जो आपने सुना अभी कारगिल जो बताया, तो मेरे साथ भी वही घटना अभी घटी है कि दो तीन केस और अभी जो पुराना केस, मैंने 2.5 वर्षों तक जेल में रहा लगभग, लेकिन वो केस कभी लगा नहीं। अभी 1990 का केस, 97 का केस, 2001 का केस निकाल निकाल करके उसको अभी लाल वारंट करके वहाँ गांव में खोज रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं है, फिर आप वहाँ से जेल भेजिएगा। तीसरे जो लोग जंगल में हैं वो लोग देखेंगे सुनेंगे कि ये लोग बार बार जेल भेज रहा है, तो उससे क्या प्रभावित होकर के लोग आएंगे? नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि जो हम लोग जिस समय काम कर रहे थे उसमें पुराने यहाँ पर प्रशासन में अफसर लोग थे, जैसे DGP थे DK पांडे या अनुबीर सरे सर थे, यहाँ पर साकेत सर थे, होमकर साहब थे, आशीष बात्रा थे, SN प्रधान थे, तो लोग हम लोग या IB के लोग जो लोग थे, हम लोग के जो काम दिए, जहाँ किए, हम लोग तन मन से धन से जहाँ भी कहे जंगल में जाकर के, जहाँ भी अपना जी थी जान को खतरा में डाल करके गए आत्मसमर्पण करवाने का काम किए, तो उस समय हम लोग मदद किए, तो हम लोग के भी जो इतना हुआ मदद हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं है। लेकिन अभी आप वर्तमान में जब यहाँ जो पुलिस अफसर हैं उनके पास जाते हैं अपने जिला में चाहे जहाँ भी, तो हम उनके अपने कहानी बताते हैं कि हम अपने आत्मसमर्पण करके आए हैं, हमको ये समस्या है इसको हल कर दीजिए, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि मेरे लिए क्या किए, आत्मसमर्पण किए हैं तो जिनके लिए किए हैं उनके लिए आप, उनके लिए किए तो वो किए होंगे, मेरे लिए आप क्या किए, आप सरेंडर करवाइए, आप दो चार वो लाइए तभी हम आपको मदद करेंगे, हम आपको आप हमको मदद कीजिएगा तभी न करेंगे, हम क्या मदद करेंगे। तो ये क्या उचित है, हम यही मैं पूछना चाहेंगे प्रशासन से कि ये उचित है। एक बार मुख धारा मार गया तो उस समय आश्वासन दिया गया कि हमारे पद पर जो भी यहाँ पर रहेंगे, जब भी आप यहाँ समस्या लेकर कहिएगा आपको हल किया जाएगा, लेकिन इस तरह का जवाब मिलती है, आज कोई भी समस्या लेकर के जाइएगा तो यही जवाब मिलती है, तो इससे हम लोग भी निराश हैं और समाज के बीच जब ये संदेश जाती है तो बहुत लोग के दिमाग में ये चीज़ जाने के बाद समझते हैं कि लोग का कोई महत्व अब नहीं है, यानी सारा चीज़ अब खत्म हो गया, तो लोग के भी स्थिति खत्म हो गया, ये लोग के भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम प्रशासन से आह्वान करेंगे, अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए।
1: श्रोताओं बातों को सुनकर मेरी भी अब विनती होगी प्रशासन और सरकार से कि इस बाबत गौर किया जाए और जो भी समस्याएं हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। और साथ ही साथ जो लाभ देने की बात कही जा रही है, पूर्ण लाभ इन्हें मिले, यही हम भी चाहेंगे। आगे भविष्य के लिए और आपके पारिवारिक विकास के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
0: धन्यवाद मैम।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। श्रोता मित्रों, नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सली गतिविधियों के कम होने का असर कई जगहों में हो रहा है। गांवों में ग्रामीणों का जीवन सहज हो रहा है। झारखंड में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो जाने से विकास का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचेगा। श्रोताओं, सरकार ने आत्मसमर्पण नीति बनाकर नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अच्छा अवसर दिया है। झारखंड पहला नक्सल प्रभावित राज्य है जिसने इतनी अधिक सकारात्मक आत्मसमर्पण नीति के साथ पुनर्वास की योजना बनाई है। आज हमारी भाई बहन जो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, इनके चेहरे पर विकास एवं राहत भरी खुशी हम देख सकते हैं। श्रोता मित्रों, इस बातचीत के बाद आइए चलें मनोरंजन की ओर और सुने ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम अवसाद चले का वक्त अब यहीं समाप्त होता है। सिंधु मिश्रा को इजाजत दें, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज की विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युव वाणी। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 का समय होगा श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोग का। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:30 का समय होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया का। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। सात बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखरा। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे उराव भाषा में। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का। 8 बजे हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 का समय होगा पब्लिक स्पीक का। और 10 बजे हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सुनहरी यादें। 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज की विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भूत बंगला के इस खूबसूरत से गीत के साथ। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। आवाजें हैं निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की।

आइए अब सुनते हैं सैयारा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने, शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है तनिष्क बख्शी ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म परम सुंदरी से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सचिन जिगर ने, आवाजें हैं सोनू निगम और कृष्णा कली साहा की।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम का अगला गीत हमने लिया है पति पत्नी और वो फिल्म से,

सांझ सरगम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं वांटेड फिल्म से। धुन बनाई है साजिद वाजिद ने, आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करगेट्टा। राज्य कैबिनेट की बैठक कल शाम 3 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से अदालत के आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, वेतन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जामताड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण के घर हुई पुलिस छापेमारी को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के मामले को उठाने के कारण भाजपा नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने बोकारो समाहरणालय में राजस्व संग्रह, डीएमएफटी योजनाओं और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक की। आयुक्त ने वन, खनन, निबंधन, उत्पाद और नगर निगम चास सहित विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का जायजा लिया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर आरआईटी मोड़ के पास दिन दहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। दो युवकों के आपसी विवाद में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 बजे समय होगा संसद समीक्षा का, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे न्यूज 8:09 रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:13 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है एक ही गायक मुकेश के द्वारा स्वरबद्ध किए कुछ फिल्मी गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म अनाड़ी से। संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक कलाकार हैं मुकेश।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी का ये शीर्षक गीत। आवाज़ मुकेश की, बोल साहिर की और संगीत खयाम का। आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश को। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाज़ मुकेश की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, आवाज़ मुकेश की, बोल इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और अब सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गाना, गीतकार योगेश और संगीतकार सलील चौधरी।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

फिल्म आनंद के इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल, आज हम इस विषय पर आप सभी को जानकारी देंगे, साथ ही आनंद लेंगे, पंच परगनिया लोकगीत का सुनवाएंगे भेंट वार्ता और कुछ जरूरी संदेश भी सुनवाएंगे। तो किसान भाई बहनों, बरसात के दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव और उमस बढ़ने के कारण पशुओं में बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इस मौसम में लापरवाही बरतने से पशु गंभीर तनाव में आ जाते हैं, जिससे दूध उत्पादन में 15% तक की गिरावट आ सकती है। पशुओं के रहने की जगह की छत यानी शेड ठीक करवाएं, ताकि पानी छत से ना टपके। फर्श को हमेशा सूखा और साफ सुथरा रखना चाहिए। मल मूत्र की उचित निकासी की व्यवस्था करें, ताकि बाड़े में कीचड़ और नमी ना रहे, जिससे बैक्टीरिया और फफूंद पनपते हैं। बाड़े के आसपास पानी जमा ना होने दें, ताकि मच्छर और मक्खियां पैदा ना हो सके। बारिश में हरा चारा ज़्यादा खाने से पशुओं को दस्त हो सकते हैं, इसलिए 30-40% सूखा चारा या भूसा जरूर मिलाएं। सड़े गले या फफूंद लगे चारे से हमेशा बचना चाहिए, यानी पशुओं को बचाना चाहिए। पशुओं के चारे में मिनरल मिक्सचर यानी खनिज मिश्रण और नमक जरूर शामिल करें, ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे। हमेशा साफ और ताज़ा पानी ही पिलाएं, क्योंकि दूषित पानी से पेट की बीमारियां हो सकती हैं। यह मौसम में परजीवियों के पनपने के लिए सबसे

0: अनुकूल होता है। इस दौरान कीचड़, मक्खी और मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। पशुओं को अभी के समय में कभी भी कच्चे या कीचड़ वाले स्थान पर बांधना नहीं चाहिए। कच्चे और नमी वाले स्थानों पर कीचड़ बहुत तेज़ी से पैदा होते हैं, जो पशुओं का खून चूसते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। इन दिनों में काटने वाले मक्खियाँ और मच्छर पशुओं को अपना शिकार बनाते हैं। इनसे पशुओं में कुछ ऐसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियाँ होती है या फैलती है, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए आपको पहले से ही सतर्कता दिखाते हुए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इन बीमारियों के टीके जरूर लगवा लें। इन्हें बरसात शुरू होने से पहले ही पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा दे देनी चाहिए, ताकि वे जो कुछ भी खाएं पिएं उसका पूरा पोषण उनके शरीर को मिले। नमी के मौसम में पशुओं के शरीर पर जू, चीचड़े और पिसू जब लगते हैं तो दवा का छिड़काव या लेप लगाना चाहिए। बरसात के दिनों में पशुधन को सुरक्षित रखने का मूल मंत्र है सफाई, खुला व हवादार स्थान, पर्याप्त पानी, पौष्टिक आहार। इन बातों पर अमल करके आप न केवल अपने पशुओं को गंभीर बीमारियों से बल्कि बीमारियों से होने वाले मृत्यु से भी बचा सकते हैं, साथ ही डेयरी व्यवसाय में होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हैं।
1: जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से

0: किसान भाई बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे पंच परगनिया लोकगीत का, ब्रजमोहन लोहार और साथी के स्वरों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता, और आज हमारे भेंटवार्ता का विषय है घर की छत पर बागवानी किस तरह से करनी चाहिए, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं रचना हेम्ब्रम। किसान भाई बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रचना हेम्ब्रम जी से, जो कि शिक्षिका के साथ साथ घर की छत पर बागवानी भी करती हैं, या यूं कहें हम महिला कृषक भी हैं। तो रचना जी, क्या हम घर की छत पर बागवानी कर सकते हैं?
1: जी, हम लोग बहुत अच्छी तरह से घर के छत पर बागवानी कर सकते हैं, और खासकर आज अभी का जो मौसम है, बारिश का जो मौसम है जी, इस मौसम पे हम खेती बहुत उत्तम तरीके से कर सकते हैं, और ये हरे पौधों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय जो पानी की है मात्रा काफी प्रचुर रहती है, रोशनी भी काफी तेज नहीं रहती है, और इस समय जो पौधों की जो पैदावार है काफी अच्छे तरीके से हो जाती है, इसलिए ये अति बहुत ही उत्तम समय है हमारे पौधों के लिए।
0: अच्छा, यानी कि हम छत पर जो बागवानी है वो कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो हम अगर छत पर बागवानी कर रहे हैं, तो बागवानी की शुरुआत हमारे जो किसान भाई बहन है उनको किस तरह से करना होगा?
1: तो जी, जब आप बागवानी की सोच रहे हैं, तो नॉर्मली जो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने घर पे छोटे छोटे पौधे तो लगाते ही हैं गमलों में, है ना? तो अगर हम बागवानी के उद्देश्य से अगर करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप पहले अपने जो छत की जो क्षमता है उसको जरूर ध्यान देंगे, और दूसरे आप उसमें किस तरह के पौधे लगा रहे हैं उसका आप चुनाव कीजिए, तीसरा आप जो मिट्टी का यूज कर रही हैं, ठीक है, तो वो मिट्टी का चयन उत्तम होना चाहिए, आप उसमें किस तरह के आप खाद का प्रयोग कर रही हैं उसका ध्यान दीजिएगा, आप गमलों में प्लास्टिक के गमलों का यूज कर रही हैं कि मिट्टी के गमलों का यूज कर रही हैं, या किसी अन्य प्रकार के गमलों का यूज कर रही हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, और ये आपके सीजन के आधार पे, मतलब मौसम के आधार पे आप पौधों का चयन करेंगी। जैसे अच्छा। हमारे अभी रबी के फसल लगाने का टाइम है कि खरीफ के फसल लगाने का टाइम है, ओके, तो समय के अनुसार आप पौधों का चयन करेंगी तो बहुत ही उत्तम रहेगा पौधों को बागवानी करने के लिए।
0: जी, तो जैसे कि आपने कहा कि पौधे लगाने के लिए गमले लगाने, मतलब गमले में लगाने चाहिए, तो क्या पौधे के हिसाब से हम लोगों को जो है गमले का चयन करना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो भी छत पर लगाते हैं, कोई कोई होते हैं कि जो पानी के बोतल मिलते हैं
1: जी,
0: उस पे पौधा लगा देते हैं, बोरे में लगा देते हैं, जो सरसों तेल का जो टीना का जो आता है जी, उसमें लगा देते हैं, तो क्या ये सब चीज में पौधे लगाना बेहतर है?
1: जी, बहुत ही बेहतर है। आजकल आधुनिकता को मद्देनजर रखते हुए आप बच्चों को काफी क्रिएटिव बनाने के लिए, या काफी उनमें सिखाने के लिए आप इस तरह की आप तकनीकी अपना करके भी पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जिन गमलों का आप चयन कर रही हैं, है ना, तो वो गमले आपके पौधे के लिए नुकसानदायक नहीं होने चाहिए।
0: अच्छा, जी जी। तो जैसे कि हम विकास उस पे अच्छे से यानी कि होगा ही,
1: जी,
0: जड़ विकसित अच्छा होंगे
1: ही। जी, जी
0: जी। तो हमें ऐसी कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए खासकर छत पे?
1: जी, कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि आप मौसम के आधार पे सब्जियों का चयन कीजिए, तो जैसे अभी हमारा जो मौसम है ये बारिश का मौसम है, ठीक है, तो रबी की जो फसलें होती हैं जिनको हम अक्टूबर के सीजन पे लगा सकते हैं, उनका आप अभी चयन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे सब्जियों में आप टमाटर हुआ, शलजम हुआ, गाजर हुआ, फूलगोभी हुए, प्याज हुए, ठीक है, पालक हुए, मेथी, बैगन, इन सब की लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो खरीफ के सीजन की जो सब्जियां आती हैं जिनका जो समय होता है जून से जुलाई के मौसम में, तो ये गर्मी का मौसम है, इस समय आप गमलों का चुनाव में आप प्लास्टिक के गमलों का उपयोग नहीं कर सकती हैं, ठीक है, और इस समय आप टमाटर हुआ, भिंडी हुआ, करेला हुआ, मिर्च हुआ, इन सब का आप चयन कर सकती हैं सब्जियों में। और दूसरा है जायद की फसलें होती हैं, जायद का समय ना होता है फरवरी मार्च और अप्रैल तक का सीजन समय होता है, उस समय अभी आप खीरा, खरबूजा, भिंडी, जो ज्यादातर हम घरों पे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, आप उन फल सब्जियों का चयन करके आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उत्तम तरीके से आप इन सब्जियों को अपने छतों में लगाइए, और पैदावार भी काफी उत्तम होता है, काफी अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो क्या लाभ मिलेगा अगर हमारे किसान भाई बहन छत पर लगाते, क्योंकि
2: बहुत कोई जैसे कि अभी फ्लैट में रहते हैं, उनको शौक भी रहता है कि वे बागवानी करें, तो वो अगर घर की छत पर सब्जियां लगाती है तो उनको क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं?
1: देखिए, लाभ की जब बात करें तो काफी लाभ है मैम, क्योंकि देखिए अभी हम जो अब अभी का जो आधुनिक युग है, आधुनिक
2: जी
1: युग में
2: जी
1: पैदावार बढ़ाने के लिए जो हमारे किसान जो हैं, भाई बहने हैं, अगर वो गांव में अगर वो खेती कर रहे हैं तो वो जो क्या कहते हैं प्राकृतिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम जो बाजार से सब्जियां खरीद रहे हैं उनमें किस तरह के
2: मिलावटी
1: मिलावटी
2: जी
1: रासायनिक का यूज किया है
2: जी
1: आप कह
2: जी
1: नहीं सकते। आपको तो सब्जियां सब हरी ही दिखेंगी,
2: बिल्कुल
1: लेकिन आप अपने आने वाले होने वाले बच्चों या जो हमारे नौजवान शिशुओं को जब आप देते हैं तो आपको वो पता नहीं, आप सब्जियां दे रही हैं लेकिन सब्जी के रूप में आप कौन से रसायन दे रही है नहीं पता, लेकिन आप घर पे खेती करते हैं तो आप रोजमर्रे की यूज जरूरत की जो सब्जियां आप लगाते हैं तो आपको पता है कि आपने उसमें कौन सा खाद लगाया है,
2: जी
1: तो आप
2: जी
1: प्राकृतिक खाद लगाते हैं तो ये आपके सेहत के हिसाब से बहुत ही उत्तम रहेगा,
2: उत्तम
1: आपके
2: है
1: बच्चों के हिसाब से बहुत
2: जी
1: उत्तम है। दूसरी बात है कि अगर आप लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप साथे साथ आप अपने लगा रहे हैं, आपके अगल बगल के लोगों को भी आप शिक्षा दे रहे हैं एंड
2: जी
1: उनको भी आप इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये भी दूसरा बहुत बड़ा फायदा है।
2: और दूसरा कि हमारी जो महिला किसान है उन्हें बाजार से खरीदना भी सब

0: हाँ सब्जी
1: पड़ेगा
0: नहीं पड़ेगा।
1: जी।
0: अगर आपकी पैदावार काफी उत्तम है तो आप अगल बगल में भी दे
1: दे
0: सकती
1: सकती
0: है।
1: हैं
0: हाँ, तो
1: जी
0: आपकी
1: बिल्कुल
0: एक जो रोजमर्रे की जो जरूरत है वो उसके भी पैसे आप आ
1: बिल्कुल
0: जाएंगे, है ना, तो ये
1: जी
0: बहुत ही उत्तम रहेगा
1: जी
0: जी।
1: तो रचना जी, क्या हम जो फूल हैं
0: हाँ जी
1: फूल भी लगा सकते हैं क्या? फूल के पौधे सब्जियों के साथ
0: जी
1: साथ?
0: जी बहुत अच्छी बात है कि आप पौधे भी लगा सकते हैं, फूल के
1: जी
0: पौधे भी। अब फूल के पौधे किन्हें किन्हें पसंद नहीं है, बच्चों से
1: बिल्कुल
0: लेके बूढ़े तक सब लोग इनको पसंद करते
1: बिल्कुल
0: हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना। और
1: जी
0: सीजन के हिसाब से आप इन पौधों को लगाइए, आप बागवानी कीजिए। हर सब्जी की एक क्यारी अलग बनाइए, अब फूल की अलग क्यारी बनाइए,
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: फूल में आप बहुत अच्छे तरह से पैदावार करा सकते हैं, जैसे गुलाब के पौधे हुए, गेंदे के
1: गेंदे
0: पौधे
1: के
0: हुए,
1: पौधे
0: है
1: जी
0: ना। और
1: बिल्कुल
0: अभी बारिश का सीजन है, अपराजिता के पौधे हैं, सदाबहार के पौधे हैं। ये पौधे क्या कहते हैं, औषधि के रूप में भी काफी उपयोग
1: काफी
0: यू
1: जी
0: कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं जी।
1: जी
0: बहुत तरीके के पौधे आप सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप लगाइए, बहुत उत्तम रहेगा
1: और रचना जी, फूलों की खेती करने से क्या होगा कि एक माहौल जो है वो खुशनुमा
0: जी,
1: भी होगा,
0: खुशनुमा भी
1: क्योंकि
0: रहेगा।
1: बेली के
0: हाँ
1: फूल भी हम लगा सकते हैं
0: जी
1: साथ ही
0: जी
1: साथ
0: बहुत सारे पौधे लगा
1: जी।
0: सकते हैं
1: तो बिना मिट्टी के पौधे हम उगा सकते हैं क्या?
0: जी। आजकल देखिए हमारे छतों में जो हमारे छत होते हैं इतनी बड़े नहीं रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: वो छोटे छोटे हमारे बालकोनी होते हैं या हमारे थोड़ी सी छत होती है उस जगह पे होती है। और हमें खेती करने का बहुत शौक भी है, तो हम
1: बिल्कुल
0: अपने शौक को कैसे पूरा करें, है ना।
1: जी
0: तो
1: जी
0: लोग उसमें बहुत सारे रूफ जो छतों की खेती करते हैं, तो बहुत सारी की ख्वाहिशें करते हैं ना। तो आप इनमें जब आप मिट्टी है, जैसे हम टाउन शहरों में रहेंगे, मिट्टी कहाँ से लाएंगे।
1: बिल्कुल
0: इस
1: जी
0: चीज के लिए जो हमारा साइंस है, जो विज्ञान है हमारा, बहुत तरह की खेती के माध्यम बताते हैं, जिसमें एक बहुत ही उत्तम तकनीक है जिसको हाइड्रोफोनिक तकनीक बोलते हैं,
1: अच्छा
0: ठीक है।
1: जी
0: और एक होता है एरोफोनिक तकनीक है। तो हाइड्रोफोनिक तकनीक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। आप पानी में पौधों को लगाइए।
1: लगाइए
0: पौधे के लिए सबसे उत्तम चीज क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा।
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके जो उनकी जो उनको जो रसायन चाहिए, ये मिनरल्स चाहिए वो उनका, तो आप पानी के माध्यम से उनको उपयुक्त दीजिए उनको,
1: अच्छा
0: ठीक है।
1: अच्छा
0: तो क्या उसमें क्या होती है कि छोटे पाइप नुमा आकृतियां होती हैं, जिनको आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं। आप चाहें तो घर पे हम लोग मनी प्लांट के पौधे लगाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखे होंगे हम सिर्फ पानी देते हैं,
1: जी
0: समय समय
1: जी
0: पे पानी चेंज करते हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, और हम जो पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी रहते हैं,
1: जी
0: तो जिनका आप उपयोग करके आप जब हमारे लिए इतना उत्तम है, तो सोचिए पौधे के लिए कितना उत्तम है। तो
1: बिल्कुल
0: बस आप पानी की समय समय पर बदलते रहिए और उनमें कुछ रसायन डालते रहिए, आप देखिएगा आप मिट्टी के बगैर भी बहुत अच्छे उत्तम तरीके से आप सब्जियों और फूलों को लगा सकते
1: लगा
0: हैं
1: सकते हैं
0: जी।
1: जी। तो हम तो पौधे लगा देते हैं रचना जी,
0: जी
1: और पौधे लगाने के बाद क्या होता है, हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं।
0: जी
1: तो हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि इन पौधों का हम ध्यान किस तरह से रखें।
0: जी फूल लगाना अलग बात है मैम, उनको ध्यान देना ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल
0: तो जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं, वैसे हमें पेड़ पौधों की भी सेवा
1: जी
0: करनी
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, तो उनके अगल बगल आप ऐसे कोई भी प्रदूषित पानी ना बहाएं। आप उनमें जब पानी दे रहे हैं, आप ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो सोचिए आप भी रह नहीं पाते। उसी तरह
1: बिल्कुल
0: पौधे भी हैं, वो जीवित प्राणी हैं, आप
1: जी
0: उसको भी सही मात्रा में पानी दीजिए, ना अत्यधिक पानी दीजिए। जैसे हम लोगों को बढ़ावा के लिए हमें बहुत सारे कैसे कहते हैं, जैसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना, तो वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती
1: जरूरत
0: है। तो
1: होती है
0: समय
1: जी।
0: समय पे आप उनकी पोषक तत्वों को आप प्रभावित कीजिए, मतलब उनको आप देते रहिए। और उसके बाद जैसे कोई फूल सूख रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, कब सूख रहे हैं, फूल अगर सूख गए हैं तो उनको आप हटा दीजिए। समय समय पर उसकी छटनी कीजिए,
1: चटनी की जी
0: आप
1: जी
0: समय पर उनके खाद
1: जी
0: दीजिए, पानी की मात्रा दीजिए। पानी आप गमलों में पौधे लगाए हैं, तो उनमें जो पानी डाल रहे हैं वो पानी सही मात्रा में जा रहा है, पानी रुक तो नहीं रहा है। अगर पानी रुकता है तो उससे जड़ें सड़ने लगती हैं,
1: जी
0: तो इस पे भी ध्यान दीजिए। मात्रा, हर चीज की मात्रा उत्तम रखिए पौधों को। और जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी है सूर्य की रोशनी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो उनके लिए जितनी जरूरत पानी की है उतनी जरूरत सूर्य की रोशनी की है। तो आप अपने छतों पर ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप में वहां पे सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में पहुंच रही है कि नहीं
1: नहीं
0: पहुंच रही
1: पहुंच
0: है।
1: रही है
0: तो
1: बिल्कुल।
0: एक पौधे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जल, जिनका निकासी उत्तम हो और जल उत्तम मिलना चाहिए। दूसरा सूर्य की रोशनी है,
1: जी
0: उन्हें उत्तम मिलना चाहिए। किस समय उन्हें ज्यादा हो रहा है तो आप उनको छांव भी प्रदान करें।
1: बिल्कुल
0: तीसरा है कि आप उनका उत्तम समय पे छटनी कीजिए, और एक बारिश के सीजन के बाद जब नया मौसम आता है तो उस समय मिट्टी का भी चयन, मिट्टी का भी बदलाव कीजिए, और उसमें आप जो हमारे प्राकृतिक खाद है उनको लगाइए, और गमले में लगाया गया मिट्टी को हर तीसरा महीने में, हर पांचवें महीने में बदलते रहना चाहिए। तो इस तरह की अगर आप छोटी मोटी छोटी छोटी उपाय करते जाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से छत में खेती कर सकते हैं।
1: जी, आज रचना जी आपने हमारे जो किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जितने भी किसान भाई बहन है आज आपको सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे। तो किसान भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हम रचना जी ने आपको और मुझे जो भी जानकारी दी है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और रचना जी आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद। मैं साथ में सारे किसान भाइयों को, बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप तकनीकी अपनाएं, आप बेहतरीन तरीके से अपने भी कीजिए, अगल बगल के लोगों को भी आप इसकी जानकारी दें, ताकि समय रहते हम और बहुत अच्छे तरीके से हमारे भारत को ग्रीनी, मतलब क्या कहते हैं, हरे भरे बनाए रखें। नहीं, जंगलों को ही हरा भरा ना बनाएं, हम अपने जो घरों को भी हरा भरा बनाएं और बच्चों को भी शिक्षा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत रमेश लकड़ा और साथी के स्वरों में।

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को देविदा, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोशल मीडिया पर लाखों आदिवासियों के नाम मतदाता सूची से कटने की आशंका के दावे को पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रहे SIR अभियान का एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम कई नई त्रुटि रहित मतदाता सूची में शामिल करना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आज से राज्य के 4 दिवस संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंचे हैं। वे 23 जुलाई तक पार्टी की विभिन्न समितियों और विधायकों के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। प्रभारी के राजू ने राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया की समय सीमा को कम से कम 10 दिन और आगे बढ़ाने की मांग की है। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज जामताड़ा महाविद्यालय सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से छात्र छात्राओं को बाल विवाह, बाल श्रम, नशापान और पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न कानूनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। हजारीबाग के सामाजिक संगठन यूथ विंग ने मॉनसून को देखते हुए शहर के 60 से अधिक ट्रैफिक पुलिस जवानों को रेनकोट उपहार स्वरूप दिए हैं। कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने विपरीत मौसम में भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने वाले इन जवानों के प्रति यह सम्मान व्यक्त किया। और कोडरमा पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल डिक्की खोलकर जेवरात चोरी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि ओडिशा के जाजपुर से हुई इन गिरफ्तारियों के साथ ही चोरी के 100% जेवरात, मास्टर चाबी और बाइक बरामद कर ली गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हो अखड़ा।

नहीं आकाशवाणी रिया चाई भाषा केंद्र तना एफ एम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज़ रबन आई मतना ना आई पेंग 6 बजाय ना ते 2 मिनट हो बस का ना कार्यक्रम हो आकड़ा आई मिच बेन लगे बेटा जो के लिंग मैं

inanga ando andre nanga abue inambugil kapaiti do hobano chae chas paiti ya olpado ya sabin likana ge ena samay do ka tangiye ni do ho do banotana chilke paiti tiya mina chilke sesena inka sesenide inamente somaria gononko che somay nelkete ge abu ina atkar kete in lekan paiti kabu paiti re do jarur abu bikas ando ayar pabu sesena enlika ayar pa sesen te ya che bikase te ya urukel otege abu ne akbu paiti te ya esurina gorojo mena nelka jidi kabu paiti ye ando somay idikete kabu taine enda do abu jana o kabu paiti pure de ye gapa gapa menke te gapa do ina chilo ka betana ina mente te gapa do chile ina बिटन ते अलबेनोय एंते हातु दिसुम पेरे मिना तनको एसपुरेबो मने चे ना दने मिनंगे पो पाइटी एन रोग द समय मिना गपरियो तरबो मिन मेंद एन गपा चुलो एन समय काबिटारु हवा इनमंते समय एसो मरंग अंडो एसो गनुंगन जिनिस तने नेयारे गनुंग को द जाइयो कबो चुकाव द ये छि कबो एम द ये एनलिकते मर अबो समारिया पाबंदे कोबो रिकेचा अंडो नेन समय रेगे सबिन रकन पाइटी पाइट पुरे थे अब ओड़ोचे अब हसु दुख को बाना जान जितना खो बाना मंद एनर दो ने नेलकन पाइटी को उकना ओल अकना उकना बो उंकुड़ तेरे एना कबू चबा का मुचर के एन लोते गे एना को भयान रद एन पाइटी अधूर गे ते ने ची एना अदा कन वा एना का हो बादे यो एना मंते मर अब सबिन बोड़ो के उन अब जपगरो का चे अब समय रिया पाबंदे बुरी के कहते बो पाइटी जे तिसिंगे अटकर जगर दो नन मोरे के चबाओ तना ना बन अयमतन तय के ना अटकर जगर इन जनम एला अयर पालिंग एला दारा बिना हेरो परोब्रिया दुरंग रिंग अयम चे बिना हेरो परोब्रिया दुरंग दो मलंतीसा उन जुड़ी को

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नाबन अयुमतन तेकना अबिन बिप्ट जगर रे सिलाई लो साथ साथ रे अकिन चुड़ी कोखिन करिंतन तेकना निन रे एसु बुगिन पाइटी अकिन इटा दिसु।

काशन किन एते हनको सात्र किन ओल पढ़ाई चिको तना स्कूल किन बिटा को तना अनो एनसा सात्रे आकिन मियन स्वरोजगारो नंदर किन नमे तना इनलिका उड़ू उड़ू के ते अब दिसुम रगे चब राज रगे ताई किन एते जाचमिन रियो बुद्धि मिना रदो ओल पढ़ाओ कनो रदो आसुलतिया हो रदो मिना एट अपा काशनो रनंग बुगिन मर निया बिपटा जगर जनम एला काशक्रम रिया तुंडु पेरे मियन आंदिरिया दुरेंग आयोमे चेबिना रजनी छातर अंडो जुड़ेगा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

0: कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को रेखा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना? दोस्तों, आज हम आपसे बातें करेंगे पालन पोषण देखरेख योजना के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप भी पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए ज़रूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। दोस्तों, इस योजना के तहत ज़रूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3रा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बातों को यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नगे नेहर में बोले नौकान परिस्थिति रे बोले सब वापस को रुड़ा।

0: में जुड़ने की अपील की गई है।
1: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा आले नवागे नेहर में ना बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ा।